ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 19, तदनुसार 10 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि

0: सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne yesterday. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: As Prime Minister Modi's highly successful state visit to Australia draws to a close, today's engagements mark the final leg of his Melbourne itinerary before he departs for the next destination

0: श्रोताओं क्षमा कीजिएगा, आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और उनके साथी।
1: गोस्वामी तुलसीदास ने

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल और उनके साथी।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सुनवाते हैं ये पहली भक्ति रचना वाणी जयराम और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, और अब सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये भक्ति गीत, और इसी भक्ति गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम समर्पण अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में रीना मिश्रा को। प्रातः 7 का समय होगा कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। प्रातः 8 समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज प्रातः 8:15। प्रातः 8:30 पर समय होगा प्रादेशिक समाचार का, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

प्रातः 8:40 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक में, कुरमाली लोकगीत कलाकार जॉर्ज नाग और साथियों की आवाज़ों में। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा। प्रातः 9:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। प्रातः 10:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दस बजकर 30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 1:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। दोपहर 2:55 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। संध्या 4:00 समय होगा मुख्य समाचार का, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 4:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। संध्या 5:00 मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 5:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विवरण। संध्या 5:05 पर समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6:00 मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या 6:30 पर बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7:00 और उसके बाद जिले में आजकल। संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8:00 समय होगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनी गंधा का। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी न्यूज़ रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर सम्पन्न होगी हमारी आज की सभा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं रीना मिश्रा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रीना मिश्रा के स्वर में ये संगीत, और इसी संगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुगम संगीत अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

कार्यक्रम जोहार चाय बासा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है उपकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म वरदान का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म द ट्रेन का ये गाना।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे येसुदास और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म त्रिशूल का ये गीत, और अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म नौजवान का ये गाना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत आवाज़ लता मंगेशकर की। और इससे पहले आपने सुना फिल्म अभिमान का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बले नवा नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
8: मुतुम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया या पाम ना रियल तपाम ना रियल वाह बेटा मिका
9: अन्यान तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं पुरी उड़ी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई अंदर जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिंग हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिल आप ही लेता ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर

0: 800-088-8527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम जोहार चाईबासा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब सुनवाते हैं आशा भोसले, अमित कुमार और रीमा की आवाज़ों में फिल्म थानेदार का ये गीत, बोल समीर के और संगीत बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ममता का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की। और अब सुनवाते हैं यशुदास के स्वर में फिल्म टूटे खिलौने का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे येसुदास के स्वर में फिल्म टूटे खिलौने का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम जोहार चाईबासा अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। समय है समाचार प्रभात का, तो आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
1: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
2: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सईद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है जब तक व्यापक बातचीत

0: जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमरीका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 77 years. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia agree to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says, secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government forms seven-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France storm into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in 4th T20 International to take 3-0 lead in 5-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार ने किए 14 महत्वपूर्ण एमओयू। राज्य में आएगा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने झारखंड और बंगाल में चलाया विशेष अभियान। 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले का किया दौरा। मनरेगा और आवास योजनाओं की जमीनी प्रगति जांची। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। अनाय खलको और विशाखा थापा ने हासिल किया स्वर्ण। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स ने दूसरे और आखिरी दिन झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में 14 महत्वपूर्ण निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिए राज्य में करीब 99,639 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन निवेशों से जिंदल स्टील और गूगल क्लाउड के सहयोग द्वारा राज्य में औद्योगिक विस्तार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
3: इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके ही काम करती है और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है। और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि एक जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भी मुलाकात की और राज्य में विश्व स्तरीय स्किल सेंटर, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में दीर्घकालीन साझेदारी और निवेश बढ़ाने की गहरी रुचि व्यक्त की है। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बल ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर करीब 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया। इस मामले में 4 FIR दर्ज कर कई वाहन जब्त किए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्र ने टेबल्स ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिले को मिलाकर एक संयुक्त विशेष टीम बनाई गई है। डीजीपी ने अवैध हथियारों की तस्करी रोकने, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच और लगातार गश्त करने पर जोर दिया है। रांची में ऐतिहासिक रथ मेला की तैयारियां जोरों पर है। इस सिलसिले में कल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं निश्चित करने का निर्देश दिए। यह पारंपरिक रथ यात्रा आगामी 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है।
4: लोग साल भर इंतजार करते हैं कि रथ यात्रा आएगी और फिर 10 दिन से यह रथ यात्रा

0: शराब प्रारंभ होगी, फिर घुटी मेला होगा। इन 10 दिनों के अंदर लगभग 15 से 20 लाख लोग यहां आते हैं। उनकी सुरक्षा, उनके आवागमन के लिए शौचालय, हर तरह की व्यवस्थाएं खड़ी हो।
1: रांची महिला महाविद्यालय के 76वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि डॉक्टर महुआ माझी ने शिक्षा को जागरूक नागरिक और सक्षम नेतृत्व के निर्माण का माध्यम बताया। उन्होंने शिक्षा में डिग्री के साथ साथ नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, जिसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सुशील प्रसाद और एमडी साहिद अलम ने जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का दौरा किया। मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पहुंचे इन अधिकारियों ने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और अनुसंधान कार्यों का निरीक्षण किया। दोनों राजनयिकों ने संस्थान के विश्व स्तरीय शोध और औद्योगिक नवाचार की सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा, जेएसएलपीएस और आवास योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। बैठक में मानव दिवस सृजन, कूप निर्माण और लंबित भुगतानों के त्वरित निष्पादन पर चर्चा हुई। इस दौरान कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची के ओरमांझी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। सांसद ने अधिकारियों को म्यूटेशन प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व कार्यों का समय पर निष्पादन करने तथा पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।
2: जमीन दलाल हैं चाहे माफिया हैं, पदाधिकारियों से मिली भगत करके गलत तरीके से रिपोर्टिंग करा करके वो जमीन को हस्तांतरण करने का काम करते हैं, दाखिल रजिस्ट्री कराने का काम करते हैं, जिसका परिणाम देर से फिर ग्रामीण को बहुत खराब भुगतना पड़ता है। इसलिए आए थे एक अंचल पदाधिकारी से कहने के लिए कि जिनका खर्ता प्लॉट में जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटि को जिस किसान का जिस ग्रामीण का शिकायत है उसको तुरंत ठीक करने का काम कराए।
1: रांची के शौर्य सभागार में कल 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीजीपी तदाशा मिश्रा शामिल हुए। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मोनिता के ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज है। विभाग का लक्ष्य लोगों को बेहद सहज तरीके से पासपोर्ट उपलब्ध कराना है।
3: 2012 में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका मूल एम था डिजिटलाइजेशन तकनीकीकरण। तो आज आप देखते हैं कि पासपोर्ट सेवा पूरी तरह डिजिटलाइज्ड है और आज 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर रहे हैं।
1: रांची नगर निगम ने राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। रातू रोड से हरमू चौक तक सड़क और फुटपाथ से अवैध दुकानों और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से हटाया गया। निगम ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते। रांची के नेपाल हाउस प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। अनाय खलको और विशाखा थापा ने स्वर्ण, वायु तिर्की ने रजत तथा कृपा राणा ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार द्वारा 14 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य में 99,639 करोड़ का निवेश होगा, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगेगा। प्रभात खबर के

सुर्खी है, बिल्डर के यहाँ लाखों की चोरी करके दूसरे घर में घुसे गार्ड हवाई फायरिंग से भागे। हिंदुस्तान लिखता है, रांची के कारोबारी की 85 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। दैनिक जागरण के शब्द हैं, जेएससीए स्टेडियम में भगदड़ व तोड़फोड़ मामले में 100 से अधिक 150 अज्ञात पर प्राथमिकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार ने किए 14 महत्वपूर्ण एमओयू। राज्य में आएगा करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। केंद्र सरकार के जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने झारखंड और बंगाल में चलाया विशेष अभियान। 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले का किया दौरा। मनरेगा और आवास योजनाओं की जमीनी प्रगति जांची। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचिक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। अनाय खलखो और विशाखा थापा ने हासिल किया स्वर्ण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत कलाकार मनसा चरण महतो एवं साथियों के स्वरों में।

अजकालर बहुमती हीरा कटन चोल दादा हीरा कटन चो लंबे चोल के कांच कटे लंबे चोल के कांच कटे जाय कॉलेज से कोल दादा देखना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मनसा चरण महतो और साथियों की आवाज़ों में फिल्म ये खुरमाली लोकगीत। और इसी लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा

0: श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको देते हैं बहुत सारे विषयों पर जानकारी, नए नए दिवसों के बारे में बताते हैं, नए नए कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं। आज हम आपसे बातें करेंगे मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम ही है कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। श्रोताओं, आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया ही नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष या दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या 9090700489 पर संपर्क करें, या जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, बातों को यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: आले नवागे नहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जा है
8: मुकुम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है जापान में रियो तपान में रियो वहाँ बेटा निका
9: अन्यान तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा उधर पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कलो पुलिस कलो में लड़ाई चलाओ तो मैं दुर्वन गया तब जय तेरे काका बुंगो उन्हें बुको को काको मेरे में
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरेन का अली आया न तुम ते ना आप ही लेता ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर

0: झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ना स्वयं ही घट पड़े
1: भारतीय सेना।
2: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम विविधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब सुनवाते हैं भेंट वार्ता। विषय है विकास के लिए शिक्षा की भूमिका। भेंट वार्ताकार हैं विजय लक्ष्मी हेम्ब्रम और भेंटकर्ता वीएम मंजू बोदरा।
3: आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय खुद ही दें।
4: मैं विजय लक्ष्मी और पेशे से मैं शिक्षिका हूँ।
3: तो जैसे कि आज हमारे चर्चा का विषय है विकास के लिए शिक्षा की भूमिका, है ना? तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा हम किसे कहेंगे?
4: शिक्षा का एक बहुत विस्तृत अर्थ है। शिक्षा सिर्फ हम शिक्षित होने या फिर पढ़ाई लिखाई सीख लेने को नहीं कह सकते हैं। शिक्षा हमारे सोचने समझने के स्तर को ऊपर उठाएगा, हमें अपने अधिकारों को जानने सिखाएगा। ऐसी बहुत विस्तृत परिभाषा शिक्षा की होगी। कहने का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान ही शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा,
3: सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, और भी सामाजिक बात व्यवहार भी,
4: संस्कार
3: संस्कृति सब आएंगे, है ना? तो शिक्षा का जो है समाज के विकास में इसकी क्या भूमिका है?
4: शिक्षा का समाज के विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। आप ऐसे भी हमारे समाज में, गांव में या परिवार में आप देखेंगे, जो आदमी शिक्षित है, समझदार है, उनके बात करने का तरीका या उनके किसी समस्या के ऊपर निर्णय लेने का या फिर किसी समस्या को समाधान करने का तरीका और जो समझदार नहीं है उनके तरीके में बहुत अंतर होता है। तो ये एक प्रत्यक्ष हम में लाभ मिलता है शिक्षा का, कि हम कहीं भी, चाहे वो हम बाज़ार जा रहे हों या बच्चों को संस्कार दे रहे हों या फिर समाज के लोगों के बीच में अपना सामंजस्य बैठा रहे हैं, हर जगह हमें शिक्षा का लाभ मिलता है।
3: तो ये जो विकास होता है समाज में विकास, तो ये किस तरह के विकास में शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है?
4: शिक्षा का हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ है। जैसे कि हम परिवार से शुरू करते हैं, अगर एक समाज शिक्षित होता है तो उस परिवार का संस्कार काफ़ी अच्छा होता है। उस परिवार के बच्चे संस्कारी होते हैं, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, दूसरों को सम्मान देने का, बड़ों को प्यार और छोटों को जो स्नेह उस परिवार में जिस तरह मिलना चाहिए वो एक अशिक्षित परिवार में नहीं देखने को मिलता है या फिर काफ़ी अंतर होता है उसमें। और
3: यानी सामाजिक विकास में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
4: एक स्वस्थ समाज का विकास करता है। और जहाँ तक हम शिक्षित होने का बात करें, तो एक बहुत छोटी सी बात है, यदि एक अशिक्षित परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो पास के दुकान से दवा लेकर के खा लेता है या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन जो शिक्षित है, जो समझदार है, तो वो अपनी समस्या से संबंधित डॉक्टर के पास ही जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि हमें दर्द है तो हम किस डॉक्टर के पास पे जाएंगे, आँख में तकलीफ है तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे।
3: सामाजिक विकास के साथ साथ शिक्षा आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण है।
4: हाँ, आर्थिक विकास भी हमें शिक्षा से इसका लाभ मिलता है। वो ऐसे कि जब हम शिक्षित होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रहने का स्तर, जीवन स्तर हमारा ऊपर उठता है, सोचने का तरीका, हमारे मानसिकता में बदलाव आता है, तो हम अपने जीवन यापन के लिए कोई अच्छा तरीका अपनाते हैं। हमें इस बात की समझदारी आती है कि हमें अच्छे तरीके से पैसा कहाँ से प्राप्त होगा। और इसमें पुरुषों

0: की जो भागीदारी होती है, आमतौर पर देखा जाता है या पहले के समय में कि घर के जो पुरुष होते थे वही कमाने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन आज समय बहुत बदल गया है, महिलाएं भी शिक्षित हैं। शिक्षित कहने का मतलब सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, वो समझदार भी है। बहुत सी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, साक्षर नहीं है, लेकिन भी वो अपना व्यवसाय कर रही हैं बहुत सफल तरीके से और परिवार के विकास में अच्छा योगदान दे रही हैं। पुरुषों के बराबर समान भागीदारी उनका भी है, तो हम इससे आर्थिक विकास भी कह सकते हैं।
1: तो इसमें महिला शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे कि महिलाओं को शिक्षित होना ज़रूरी है?
0: महिलाओं को शिक्षित होना तो बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं कि जब एक महिला पढ़ती है, एक नारी पढ़ती है, तो पूरा परिवार उससे शिक्षित होता है, इससे पूरा समाज शिक्षित होता है। लेकिन जब एक पुरुष पढ़ता है, वो शिक्षित होता है, तो सिर्फ एक ही पुरुष शिक्षित होता है। एक नारी दो परिवार को लेकर चलती है,
1: मायका और ससुराल।
0: अगर शादीशुदा है तो, और नहीं भी शादीशुदा नहीं भी है तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, अविवाहित महिलाएं भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। वो अपने भाई बहनों के साथ में, अपने भाई के बच्चों के साथ में, या वो अड़ोस पड़ोस के साथ में जो सामंजस्य उनका रहता है, जो आर्थिक विकास में जो उनकी भूमिका रहती है, वो काफ़ी अच्छी होती है।
1: कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी ही करके
0: नौकरी ही करे
1: आर्थिक मदद करे अपने घर को।
0: बहुत सब व्यवसाय आज महिलाएं बहुत सफलतापूर्वक चला रही हैं।
1: आज मेरे विचार से एक कृषि कार्य को संपन्न करने के लिए भी पढ़ा लिखा होना या शिक्षित होना बहुत
0: आवश्यक है, क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उसमें हम बीज कब डालेंगे, कौन सा मौसम सही रहेगा, उसमें खाद डालेंगे तो उसका क्या अनुपात होगा, या फिर किस समय में हमें उसका तोड़ाई कर लेना है, या फिर कौन से फसल को जब हम मिला कर बोते हैं तो हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं
1: जो नई नई तकनीकों के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है शिक्षित रहने से। तो शैक्षणिक प्रक्रिया में जो है विद्यालय, है ना, शैक्षणिक प्रक्रिया में विद्यालय और समाज, है ना, इसकी क्या भूमिका होती है?
0: विद्यालय की एक अहम भूमिका होती है। ऐसे तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका पहला पाठशाला उसका परिवार ही होता है, पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, इसके बाद जब वो विद्यालय आता है, तो विद्यालय में ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें उसे सीखने को मिलती है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, वो अपने साथ में, अपने साथियों के साथ में किसी भी चीज़ को साझा करना सीखता है, दूसरों के साथ में कैसे हम सामंजस्य बना के चले, ये सब सीखता है। बहुत से सामाजिक गुण जो हैं वो उसे विद्यालय में ही मिलता है, जो कि परिवार में नहीं मिलता। साथ में एक बहुत बड़ी बात है, घर में बच्चों को हम बहुत सुरक्षात्मक तरीके से रखते हैं, जो कि विद्यालय में बच्चे अपने आप को खुद ही सुरक्षा देने का सोचते हैं, और सिर्फ खुद को सुरक्षा नहीं देते बल्कि अपने साथी को, अपने जो अपने से छोटे क्लास के जूनियर बच्चे होते हैं उनको भी एक उत्तरदायित्व का भावना उनको आता है कि ये हमारा स्कूल है, ये हमारा क्लास है, हमसे छोटे बच्चे हैं, मुझे ये करना है, एक अनुशासन उनमें आता है। इसलिए विद्यालय की बहुत अच्छी भूमिका होती है, और इसमें जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो रोल मॉडल की तरह होते हैं।
1: इसीलिए ही शायद ये जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की जो बोली हुई बातें होती है वो पत्थर की लकीर की तरह
0: होती है, पत्थर की लकीर उनके दिमाग में छप जाता है।
1: तो जैसे कि हम बातें कर रहे थे सामाजिक परिवर्तन के लिए भी शिक्षा जरूरी है, तो सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका होती है?
0: कि सामाजिक परिवर्तन कहने का मतलब समाज में जो हमारा आज के समय में मानसिकता है या रहने का जो जीवन स्तर है, ये शिक्षा से

0: काफ़ी ऊपर उठता है। हमारे सोचने समझने का तरीका ऊंचा होता है, जिससे हमारा स्तर ऊंचा उठता है। कहने का मतलब, जब हम शिक्षित होते हैं तो नए नए अवसर जो हैं इसे हम पहचानना शुरू करते हैं। साथ ही हमारा अधिकार क्या होता है इसे हम जानने लगते हैं,
1: कर्तव्य
0: जानने लगते हैं, अधिकारों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये जानते हैं। साथ ही अगर हमारे साथ कोई
1: गलत
0: होता है या फिर कहीं हमें लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, आजकल बहुत सी सामाजिक समस्याएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं
1: अब भी हैं,
0: या फिर आप देखेंगे यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं जो आजकल बहुत देखने को मिलती है, तो
1: हाँ, वो अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ भी हो सकती है।
0: हाँ,
1: कि नहीं,
0: ये विद्यालय हो या आते जाते समय कहीं भी, आपको बस में
1: या आप कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं तो वहाँ का जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर
0: कार्य क्षेत्र में
1: है।
0: या फिर जानबूझकर भी होता है, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती है, कई बार बच्चे नहीं बता पाते हैं या फिर उन्हें डराया धमकाया जाता है। तो अगर हमारा समाज शिक्षित होता है, बच्चे शिक्षित होते हैं, तो इन बातों को अपने घर में माता पिता के साथ जरूर साझा करेंगे, और उस समस्या से निपटने के लिए हमें कौन से कदम उठाने हैं ये सारी बातें हमें शिक्षा से ही प्राप्त होती हैं।
1: और आजकल तो हर चीज़ के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए जा रहे हैं, तो
0: हाँ,
1: उसकी भी जानकारी
0: जानकारी हमें मिलती है।
1: तो आप, जैसे कि हम शिक्षा के माध्यम से विकास की बातें कर रहे हैं, तो हमारे जो श्रोता हैं आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम शिक्षित हो जाएं तो ये काफ़ी होगा। हमें अपने साथ साथ में, जैसे आज लोग कहते हैं कि जब हम एक पेड़ काटेंगे तो जब तक हम 5 पेड़ तैयार नहीं करते हैं तो हमें वो पेड़ नहीं काटना चाहिए। ऐसे ही यदि हमने शिक्षा प्राप्त कर ली है तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम और 5 को शिक्षित करेंगे। शिक्षित करेंगे मतलब उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे,
1: साक्षर तो बनाएंगे ही
0: लेकिन अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही वो अपने आर्थिक विकास कैसे करेंगे इसका रास्ता भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा हमारा सामाजिक विकास
1: नहीं हो सकता है,
0: रुक जाता है, क्योंकि पहिया जो हमारी जिंदगी की चलती है वो पैसे रूपी ईंधन से ही चलती है, तो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारा जो राष्ट्रीय बचत है, अगर आप बहुत दूर की सोचें तो राष्ट्रीय बचत इससे बढ़ता है, राष्ट्रीय आमदनी हमारी बढ़ती है, क्योंकि जहाँ घर का एक व्यक्ति कमाने के लिए बाहर जाता है, वही जब शिक्षित होने के बाद महिलाएं भी बाहर निकलती हैं तो 2 व्यक्ति कमाता है, तो जाहिर सी बात है 2 व्यक्ति जब घर में कमाने वाला हो तो हमारे जीने का स्तर अच्छा हो जाएगा, सोचने का स्तर हो जाएगा, हमारे पढ़ाई का स्तर ऊपर उठ जाएगा, इसके साथ ही हमारा सामाजिक स्तर भी ऊँचा होगा और राष्ट्रीय जीवन स्तर है वो भी हमारा ऊपर उठेगा। तो हमें अवश्य शिक्षित होना चाहिए, दूसरों को शिक्षित करना चाहिए,
1: अपने घर के लोगों को ही नहीं अपने आसपास
0: के
1: लोगों को
0: भी
1: शिक्षा देना चाहिए, शिक्षित करने में उनकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने विजयलक्ष्मी जी। तो इस बारे में आपसे बातें हुई, जानकारियां दी आपने, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। विषय था विकास के लिए शिक्षा की भूमिका। जानकारी दे रहे थे विजय लक्ष्मी हेम्ब्रम और उनसे बातें कर रही थी VM मंजू बोदरा। और इसी भेंट वार्ता के साथ ही श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए विदा दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन का। कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत फिल्म तुमसे नहीं देखा का। ये गाना आवाज़ शान और श्रेया घोषाल की

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट।
4: मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड।
3: तो
4: डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी।
3: पर पैसे तो गए।
4: नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जोखी लापरवाही तो नहीं करने पड़ेंगे भरपाई।
5: और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है की
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम रसरंजन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म हम साथ साथ हैं का ये गीत, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम साथ साथ हैं का ये गीत, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं फिल्म सौदागर का ये गाना, मनहर उदास, सुखविंदर और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सौदागर का ये गीत, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर की। इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं संपन्न होता है। अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बज चुके हैं और अब समय है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT,

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक AC की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के

0: मौन, लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत। अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
0: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं, जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटली ग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।

पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था, मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
4: मैसिडोनिया चलो,
3: वापस चलो
4: सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो आचार्य,
6: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो
6: आचार्य।
7: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छिनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: चलते हैं इतिहास की।

0: समय पलटते हैं इतिहास के पन्ने, जानते हैं क्या क्या घटनाएं घटी, कौन महापुरुषों का जन्म हुआ, किसने हम लोगों से विदा लिया, तो पहले जानकारी हासिल करते हैं घटनाओं के बारे में।
1: बिल्कुल, तो आपको बता दें 1806 में आज ही के दिन 1857 की क्रांति से करीब 50 साल पहले तमिलनाडु के वेल्लोर किले में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला संगठित और सशस्त्र विद्रोह किया था और इसे वेल्लोर म्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है।
0: और 1966 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय वायु सेना के बेहतरीन लड़ाकू विमान मिग का महाराष्ट्र के नासिक में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1965 की बात करें तो 10 जुलाई को ग्वालियर में महिलाओं के लिए देश के पहले एनसीसी कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1999 में आज के दिन जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत हुई थी।
1: और 10 जुलाई 1848 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच दुनिया की पहली लंबी दूरी की टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी, जिससे संचार क्रांति को बढ़ावा मिला। और आज के दिन वर्ष 1913 में कैलिफोर्निया की डेथ वैली में पृथ्वी का अब तक का सबसे अधिक तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
0: और 1962 में नासा द्वारा पहला सक्रिय संचार उपग्रह टेल स्टार 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, जिसने टीवी और फोन सिग्नल्स को स्पेस के जरिए भेजने की शुरुआत की।
1: और आज ही के दिन 1973 में बाहमास को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, इसीलिए आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें बाहमास की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। 1624 में आज ही के दिन हॉलैंड और फ्रांस के बीच स्पेन विरोधी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था।
0: और आज ही के दिन 2003 में नासा का मंगलयान रोवर लॉन्च हुआ। 2008 में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत स्पेस सेल की घोषणा की थी और 10 जुलाई 2005 में भारत और श्रीलंका में शिक्षा एवं सामुदायिक विकास से संबद्ध दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

0: अब इतिहास का अगला पन्ना पलटते हैं, जानते हैं आज किन महापुरुषों का जन्म हुआ।
1: तो 10 जुलाई 1910 में कर्नल धर्मवीर सिंह का जन्म हुआ था, जो भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे। वर्ष 1921 की बात करें तो 10 जुलाई को असद भोपाली का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे।
0: और सैयद अली भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। इनका जन्म 10 जुलाई 1942 को हुआ और 1949 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज थे। इन्हें 1980 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1951 में आज ही के दिन पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, यूपी के 19वें मुख्यमंत्री और हाल के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी जन्म हुआ था।
1: और 10

0: जुलाई 1856 में आज ही के दिन पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर अमेरिकी सर्बियाई वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था। निकोला टेस्ला ने वायरलेस कम्युनिकेशन, एसी करंट, टेस्ला वेव्स, बिजली से चलने वाली मोटर, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल, राडार, एक्सरे रहित 300 से ज़्यादा आविष्कार किए। उन्होंने उम्र भर शादी नहीं की ताकि उनके काम में दखल न दे सके कोई। और 1950 में भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना का जन्म हुआ। और 1983 में आज ही के दिन चित्रा के सोमन, जो भारतीय एथलीट हैं, इनका भी जन्म हुआ था।
1: और 10 जुलाई 1956 में आज ही के दिन बॉलीवुड के बाबूजी के नाम से मशहूर आलोक नाथ का जन्म हुआ था। आलोक नाथ एक प्रशंसित भारतीय अभिनेता हैं, जिन्हें फिल्म और टेलीविजन में उनके यादगार चित्रण के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से ऐसी भूमिकाओं में जो गर्मजोशी, परंपरा और भावनात्मक गहराई का प्रतीक है।

0: इतिहास का आखिरी पन्ना पलटते हैं, जानते हैं आज किन महापुरुषों का निधन हुआ।
1: तो 10 जुलाई 1927 में प्रसिद्ध इंजीनियर, समाज सेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक सर गंगाराम की मृत्यु हुई थी। भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी के समर्थक लोक कलाकार थे, उनका भी निधन 10 जुलाई 1971 को हुआ था।
0: और 2004 में अब्दुल गफूर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, इनका देहांत हुआ था। और 2006 में आज ही के दिन अहमद नदीम कासमी को, जो प्रसिद्ध शायर थे, इनकी मृत्यु हुई थी।
1: और 10 जुलाई 2014 में आज ही के दिन फिल्मों में अक्सर दादी का रोल करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री जोहरा सहगल का 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। महज 7 साल की उम्र में मोतियाबिंद से उनकी बाई आंख की रोशनी चली गई थी। इन्हें 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था।
0: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जोहरा सहगल आज भी अपनी फिल्मों और बेमिसाल शख्सियत के लिए याद की जाती हैं। 2007 में आई समरिया फिल्म जोहरा सहगल की आखिरी फिल्मों में से एक थी।

0: तो आभा आज और भी लगता है कुछ विशेष दिवस है।
1: हर दिन अपना एक खास दिन होता है ना, और हर दिन मतलब मुझे लगता है कि कोई ना कोई दिवस हम जरूर मनाते हैं।
0: हाँ
1: तो
0: आप
1: आज है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, जो भारत में मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर उद्योग में लगे मछुआरों और वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है।
0: और ये दिन 1957 में डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के एच अली कुन्ही द्वारा भारतीय मेजर कार्य मछली के सफल कृत्रिम प्रजनन की ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार में मछली पालकों और मछुआरों को योगदान को सम्मानित करना है।
1: और इसी दिन यानी कि आज वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस यानी कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे भी हम मनाते हैं, और यह दिन नवीकरण ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा के क्षेत्र में

0: अभा बातचीत हो गई, इतिहास के पन्ने सारे समटा गए, तो अब चलते हैं स्वास्थ्य की ओर और हाँ, जानते हैं भाई इस वक्त मानसून जो चल रहा है उसमें काफी उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में भी आ रहे हैं, कभी बुखार कभी कुछ ना कुछ आ रहे हैं।
1: हाँ, तो ऐसा है कि चिलचिलाती धूप के बाद मानसून की बारिश भले ही राहत लेकर आती है, लेकिन इसी राहत के बीच कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और मतलब बारिश के दौरान जमा पानी में मच्छरों के पनपने की आशंका जो है सबसे अधिक रहती है। और आपको बताएं कि साफ और गंदे दोनों तरह के जमा पानी में मच्छर पनपते हैं और यही मच्छर कई बार जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए हमें कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है।
0: हाँ, मच्छरों की नो एंट्री के लिए घर के भीतर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दे। सप्ताह में एक बार एक दिन तय कर ले कि जब कूलर, फ्रिज के पीछे की ट्रे, गमलों के नीचे रखी प्लेट और पालतू जानवरों के बर्तन को पूरी तरह खाली करके सुखाएं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, चाहे आप दिन में सो रहे हों या रात में। डेंगू के मच्छर अमूमन दिन के समय ज़्यादा सक्रिय होते हैं और कहीं भी अगर आराम भी कर रहे हो तो सूती कपड़े ढीला ढाला पहने और फुल बांह का पहने।
1: हाँ, और मच्छरों से बचाव के लिए आप घर के आसपास गेंदे का पौधा, तुलसी, लेमन ग्रास या पुदीना लगा सकते हैं। इनकी खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं। और शाम के समय बच्चों को बाहर खेलने भेजते समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनाकर भेजें और मॉस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम जरूर इस्तेमाल करें।
0: और यदि घर के आसपास कहीं पानी जमा है जिसे तुरंत हटाना मुमकिन नहीं है तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर या मिट्टी का तेल डाल दें। इससे मच्छर का लार्वा सांस नहीं ले पाता और वहीं दम तोड़ देता है। इसलिए बरसात में सावधानियाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि न जमा रहेगा पानी न पनपेंगे मच्छर। और एहतियात के तौर पर जो है इसका डेंगू अगर हो भी जाता है तो उसका जांच करवाते हैं पहले।
1: हाँ,
0: और उसके लिए उपचार बचाव ही सबसे बड़ा उसका काम है। तो बचाव के लिए घर और आसपास पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचे, वायरल फीवर से बचने के लिए हाथों की सफाई, संक्रमित व्यक्ति से दूरी, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम जरूरी है। कुछ भी हो आराम तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की भी सलाह आप ले सकते हैं।
0: हाँ, थोड़ा सा भी हो मतलब लगता है आदमी को कि बारिश में बुखार है, वायरल या डेंगू है, कुछ भी नजर आए अभी डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें और उपचार करें और आराम और पानी भरपूर मात्रा में लेते रहें।

0: और जानती हो आभा, ये 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते।
1: और रांची के नेपाल हाउस प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। और अनाय खलखो और विशाखा थापा ने स्वर्ण, वायु तिर्की ने रजत तथा कृपा राणा ने कांस्य पदक जीता है।
0: और लॉर्ड्स टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने उतरेंगी हमारी भारतीय टीम। T20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला टीम शुक्रवार से यहां पहले महिला टेस्ट में लॉर्ड्स पर इंग्लैंड का सामना करेंगी, तो उसका इरादा इस नाकामी से उबरने में का होगा। और T20 विश्व कप से जल्दी बाहर होने के बाद भारत को टेस्ट मैच के लिए तैयारी का अधिक समय मिल गया है, और ये मैच क्रिकेट का घर कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर पहले पुरुष टेस्ट के 142 साल बाद होगा। अब
1: तो
0: भारतीय टीम ने
1: मतलब,
0: इससे पहले
1: हाँ।
0: जो है ना मार्च में ये टेस्ट यहाँ खेला था, और यहाँ पर फिर उन लोग जाने की तैयारी में हैं। तो उस जो भारतीय टीम उतरेगी महिला क्रिकेट से, तो उन लोगों को देते हैं
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: हाँ,
1: और ये हमारे लिए काफी

0: लगा। देखते देखते ना अब हम लोग को जाने का समय भी हो रहा है और दोस्तों के साथ अच्छा ही समय बीता। हमारे दोस्त भी काफी गाने भी सुने।
1: हाँ, और हमने बहुत सारी जानकारियां भी अपने श्रोताओं के साथ
0: दोस्तों से ही कहना चाहेंगे ना कि ऐसे मौसम में अपना ख्याल रखने पर अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि मौसम जो है मानसून का है तो ज्यादा सचेत रहना है। हाँ। सतर्क रहें और ज्यादा कुछ नहीं। और तो इसी के साथ कार्यक्रम जोहार रांची से रेनू
1: और आभा को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार जोहार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके सबसे पसंदीदा शो आपकी पसंद में। तो हो जाइए तैयार अपने मन पसंद के गाने को सुनने के लिए। लेते हैं पहली फरमाइश और शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज से। फिल्म है दिल तुझको दिया, गीत और संगीत राजेश रोशन का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, प्रतीक और प्रज्ञा।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद आभा के साथ। अब बारी है हमारे उन प्यारे श्रोताओं की जो हमें लगातार चिट्ठियां और संदेश भेजते हैं, और ये है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, और रांची से हैं कोमल। और इनकी फरमाइश है एक बेहद ही खूबसूरत गीत की, जो है 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर का, रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का, और इस सदाबहार गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: सेना।
1: आपकी पसंद में हमारे अगले श्रोता है इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूर जहां, डब्लू नूर जहां, सैयद नूर जहां, जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, और ये सुनना चाहते हैं अमाल मलिक और पलक मुश्किल की आवाजों में फिल्म सनम रे का ये गीत। गीतकार हैं मनोज यादव, संगीत अमाल मलिक का।

लगता है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक, मीका वीरक, मेहरनगर उमरखेड महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवहानकर राही, सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर और शैलेश गवहानकर।

अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में नक्स लयालपुरी की रचना है, संगीत खयाम का, फिल्म का नाम है खानदान। और इस गाने को सुनना चाहते हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश।

दोस्तों, हर गाने के पीछे एक कहानी होती है और आपकी कहानियां सोए ही तो यह आपकी पसंद खास बनती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले सफर में कुछ और फरमाइशी गीतों के साथ। कार्यक्रम से आभा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी सुनिए राखी और निधि के साथ।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। मैं हूं आपकी सखी निधि और आज मेरे साथ है राखी। कहो राखी, कैसी हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ निधि। नमस्कार सखियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम दोनों, और आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगी अपने घर परिवार के साथ।
0: हाँ राखी, एक आशा और भी होती है कि हमारी जो बहनें हैं हमारे कार्यक्रम का भी इंतजार करती होंगी।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: और इसे नियमित रूप से सुनती भी होंगी, है ना? और इन्हें पसंद भी आता होगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारी यही कोशिश भी रहती है बहनों कि हम नई नई बातें लेकर आपके लिए आएं और आपका मनोरंजन भी करवाएं।
1: हाँ, बहनों का स्नेह ही है जो हमें उत्साहित रख

0: है कि हम
1: हाँ
0: हर दिन उनके लिए कुछ नया लेकर आने का प्रयास करते हैं और उन्हें पसंद भी आता है। और नई बातें जिनसे हमारी बहनों को मदद मिले, ऐसी बातें हम उन्हें सुनाते हैं और उनका मार्गदर्शन हो, ये भी हम चाहते हैं। और साथ ही साथ भाई, मनोरंजन को भला हम कैसे भूल सकते हैं निधि, मनोरंजन तो होता ही है,
1: बिल्कुल
0: जानकारी और गीत सब
1: हाँ।
0: कुछ
1: और
0: है
1: हम
0: हमारे
1: अपनी
0: कार्यक्रम
1: श्रोता
0: में।
1: बहनों के पसंदीदा गीतों का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि कार्यक्रम की जो असली खुशबू है ना राखी, वो तो संगीत है।
0: बिल्कुल, ये तो है। और खुशबू की बात जब तुमने की निधि, तो मुझे ना बगीचे की याद आ गई अपने।
1: अच्छा
0: तो आज हम फूलों के बगीचे की बात करेंगे अपने कार्यक्रम में।
1: अच्छा और आज हम बताएंगे कि किस तरह बागवानी करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, यानी कि बागवानी का मतलब है खुशी,
0: हाँ,
1: है ना?
0: बागवानी का मतलब सच में तुमने कहा कि खुशी। बागवानी एक ऐसी चीज है जो हमारे तनाव को दूर करती है। बागवानी एक बहुत ही अच्छी हॉबी है जिसे हम कह सकते हैं। इसे अपनाने से हम प्रकृति के करीब आ जाते हैं, और जब हम प्रकृति के करीब आएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही सहज हो जाती हैं।
1: हाँ, और बागवानी से पेड़ पौधों के बारे में हमारी जानकारी भी तो बढ़ती है राखी, और साथ ही पेड़ पौधों के करीब रहने से हमारा मन शांत होता है, हमें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है।
0: और सबसे बड़ी बात कि जब हम बागवानी करते हैं तो ये हमारा जो है ध्यान अपनी ओर खींचती है। वहां हम ध्यान केंद्रित करते हैं, पूरी तरह डूब जाते हैं फूल पौधों के बीच में। और इससे एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि अभी जो हम मोबाइल के बिल्कुल गुलाम हो गए, एक तरह से कहो, स्क्रीन टाइम हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सारे अच्छे समय को हमारा वो ले लेता है। तो स्क्रीन टाइम कम होता है ना, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है।
1: हाँ राखी, और स्क्रीन टाइम कम होने से हमारी आंखों को आराम मिलता है, मानसिक थकान दूर होती है, पौधों को लगाने में, उन्हें पानी देने, मिट्टी को तैयार करने में, इसी क्रम में राखी ना हमारे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है और हमें
0: हाँ
1: पता
0: हाँ
1: भी नहीं चलता। तो बहनों, पौधों की देखभाल करके उन्हें फलता फूलता देखकर बेहद खुशी मिलती है, और इसका कारण है कि कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन है जो तनाव पैदा करता है वो कम हो जाता है, और एक और हार्मोन है एंडोर्फिन, यानी खुशी देने वाले वाला जो हार्मोन है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो है
0: बिल्कुल,
1: ना ये बहुत फायदे वाली बात?
0: हाँ, बहुत फायदे वाली बात है। और निधि, हम बहुत सारे ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो छोटी जगह में भी उगाए जा सकते हैं, जैसे चेरी टोमेटो लगा दो, या फिर लेमन ग्रास जिसको हम लोग चाय में डाल के भी बनाते हैं, पीते हैं, बहुत सुगंधित चाय बनती है। शिमला मिर्च लगा सकते हैं, हल्दी, पुदीना, धनिया, या फिर अगर औषधीय पौधों की बात करें तो एलोवेरा भी लगा सकते हैं हम, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए, और हमारे साथ साथ सौंदर्य के लिए, बालों के लिए
1: बिल्कुल
0: और त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद
1: हाँ, तो
0: है।
1: बहुत सारे लाभ हैं इसके, और बागवानी करने से हमें सुंदर फूल, फल और सब्जियां सभी ताजे रूप में मिल जाती हैं, है ना? हमें इंतजार नहीं करना पड़ता, बाजार नहीं जाना पड़ता, लेकिन इसमें मेहनत की जरूरत है राखी, और साथ ही इसके लिए बहनों आपको वक्त भी निकालना पड़ेगा।
0: हाँ, तो निधि जग, अगर हमें अपने वक्त को खूबसूरत बनाना है तो वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। और बहनों, आप अपने परिवार के साथ अन्य सदस्यों को लेकर भी, खासकर अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों को भी आप शामिल कर सकती हैं इसमें। वैसे बच्चों की जिज्ञासा खुद ब खुद बढ़ती है जब वो इन पौधों के समीप आते हैं, और धीरे धीरे आपकी बागवानी में वो भी शामिल हो जाएंगे।
1: हाँ, तो इस तरह से हम बहुत सारे फूलों के पौधे लगा सकते हैं, जैसे
0: हाँ
1: गेंदा है या गुलाब है, और छोटे छोटे जो जिसे मोगरा कहते हैं, और सनफ्लावर जो सूरजमुखी कहते हैं, ये सभी हम गमलों में उगा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा ज़्यादा जगह जगह की भी ज़रूरत नहीं है,
0: हाँ
1: तो ये आसानी से, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो बालकनी में ये सब आप लगा सकते हैं, और साथ ही आप इंडोर प्लांट्स भी घर में लगा सकती हैं, जैसे एरिका पाम, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली वगैरह। स्नेक प्लांट और एरिका पाम कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होता है।
0: बिल्कुल। और बहनों, इंडोर प्लांट से घर की खूबसूरती भी बढ़ती है। घर के अंदर हरियाली देखने से हमें अच्छा महसूस होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि तनाव कम होता है, खुशी मिलती है। तो आप भी बागवानी अपनाएं, ये घर की शोभा बढ़ाने, ताजी फल और सब्जियां देने के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। और निधि, कार्यक्रम की शुरुआत में ही तुमने फूलों की बात बात की थी, है ना। तो पता है मुझे रजनीगंधा फूल बहुत पसंद है।
1: अच्छा, तो क्यों ना बहनों को भी भेंट की जाए रजनीगंधा फूल। तो सुनवाते हैं ये गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Hey girls,
4: hey, congratulations.
3: आज तो पार्टी चाहिए,
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है बहनों, आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आपके साथ हैं हम दो सखियां राखी और निधि। और निधि, आगे बहनों के लिए कुछ जानकारियां लेकर आए हैं ना हम।
2: हाँ, तो बहनों प्रस्तुत है भेंट वार्ता। आज का विषय है किचन गार्डन, समय की मांग। भेंट वार्ताकार हैं आरती मिश्रा और इनसे बातें कर रही हैं राखी शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
3: बहनों, हरियाली केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे लिए स्वास्थ्य और सुकून का उपहार भी लेकर आती है। साथ ही साथ हम आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हैं। घर की छोटी सी जगह में लगाई गई गृहवाटिका या जिसे हम किचन गार्डन कहते हैं, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और ये हम सब जानते भी हैं। तो आइए आज अपने कार्यक्रम में हम इसी विषय पर जानकारी लेते हैं। और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आरती मिश्रा। आप एक कुशल गृहिणी हैं और अपने घर परिवार की बगिया को बड़े अच्छे से सहेज कर रखा है आपने।
4: जी मैम, धन्यवाद। सखियों को मेरा नमस्ते।
3: आरती जी, हम भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि किचन गार्डन क्या है और आज इसकी जरूरत क्यों है।
4: मैम, किचन गार्डन का मतलब है घर के आसपास छत, बालकनी या आंगन में अपनी जरूरत की सब्जियां, फल और हरी पत्तेदार पौधों को उगाना। यह केवल बागवानी नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के समय में बाजार में मिलने वाली सब्जियों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होता है। ऐसे में घर पर उगाई गई ताजी, सुरक्षित और पौष्टिक सब्जियां हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की भी दृष्टि से देखा जाए तो किचन गार्डन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है हमारे जीवन में। थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी मेहनत में हम अपने घर के लिए ताजा भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। थोड़ा सा समय देके हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं।
3: बहुत अच्छी बात आपने वैसे तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी मेरा अगला प्रश्न यही होगा कि अगर हम घर में किचन गार्डन शुरू करते हैं तो उसमें और क्या फायदे हैं।
4: जी मैम, किचन गार्डन के कई लाभ हैं। सबसे पहले लाभ है कि हमें ताजी और रासायनिक सब्जियां मिलती हैं, जिससे परिवार का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। दूसरा, इससे घरेलू खर्च में भी बहुत कुछ हद तक बचत होती है। तीसरा, बागवानी करने से मानसिक तनाव कम होता है और प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। अब जैसे अगर हमारे पास कभी हम मार्केट नहीं जा पाए, सब्जियां नहीं है, तो अगर कि हमारी किचन में जो सब्जियां है हम उससे लेके अपना काम, उस दिन का काम चला सकते हैं। इसके अलावा घर का जैविक कचरा है, जैसे सब्जियां और फलों के छिलके, खाद बनाकर दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जिससे हमारा वातावरण भी साफ सुथरा रहता है। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। बच्चों को पौधों के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है। अपना मानसिक तनाव कम होता है समय देने से।
3: तो बहुत अच्छी बात आपने बताई आरती जी। लेकिन आजकल क्या होता है कि अधिकतर शहरों में तो लोग फ्लैट में रहने लगे हैं और जगह बहुत कम रहती है ऐसे तो करें, तो इसमें हम आपसे

0: जानना चाहेंगे कि अगर कम जगह में किचन गार्डन बनाना हम चाहें तो कैसे बना सकते हैं?
1: मैम, किचन गार्डन के लिए नहीं है कि बहुत बड़ा जगह चाहिए या बहुत बड़ा ये होना ही चाहिए। कम जगह होना किचन गार्डन बनाने में कोई बाधा नहीं है। आजकल लोग बालकनी है, छत है, खिड़की के आसपास या छोटे से आंगन में भी सफलतापूर्वक किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं। इसके लिए गमले हैं, ग्रो बैग है, प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, पुराने डिब्बे या बेकार कंटेनरों का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि जगह कम है तो वर्टिकल गार्डन जैसे दीवार पर पौधे लगाना एक अच्छा विकल्प है। सबसे जरूरी बात है कि पौधों को रोज 5 से 6 घंटे धूप मिले और पानी की उचित व्यवस्था हो। थोड़ी सी योजना और नियमित देखभाल से हम बहुत कम जगह में भी साल भर ताजी और पौष्टिक सब्जियां उगा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जगह कम है तो हम किचन गार्डन नहीं बना सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी से किया जाए तो थोड़ी सी जगह में भी किचन गार्डन आराम से विकसित किया जा सकता है।
0: जी, जब शुरुआत हम करते हैं तो आप ये बताएं कि शुरुआत में किन पौधों या सब्जियों को लगाया जाना बेहतर रहेगा?
1: जी मैम, ये सबसे जरूरी बात है। शुरुआत हमेशा ऐसे पौधों से करनी चाहिए जो आसानी से उग जाए और जिनकी देखभाल भी सरल हो, जैसे धनिया के हुआ, मेथी हुआ, पालक हुआ, पुदीना हुआ, हरी मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है। इसके अलावा करी पत्ता है, तुलसी और एलोवेरा जैसे उपयोगी पौधे भी लगाए जा सकते हैं। शुरुआत में कम पौधे लगाएं ताकि उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर सके। जब अनुभव बढ़ जाए तो मौसम के अनुसार अन्य सब्जियां, फलदार पौधे भी शामिल किए जा सकते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, किचन गार्डन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है और कोशिश करने पर हमारा अनुभव भी बढ़ते जाता है।
0: हाँ, शुरुआत छोटे से की जाए और फिर धीरे धीरे जब अनुभव बढ़े तो और भी सब्जियां या फल लगाए जाए, है ना? और एक अपना ही आनंद होता है कि जब आप घर के पौधों से तोड़कर कुछ भी धनिया पत्ता तोड़ लेते हैं या मिर्ची तोड़ लेते हैं, टमाटर,
1: जैसे हमारी किचन में कुछ भी जरूरत है, मिर्च की जरूरत है, तोड़ लाए और काम किए अपना।
0: बहुत अच्छा, शुद्ध भी होता ही है। आरती जी, आप ये बताएं कि जैसे किचन गार्डन में पौधों की देखभाल करने के लिए क्या जरूरी सुझाव आप देंगे, क्या बात?
1: जी मैम, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैसे उसका देखभाल किया जाए। किचन गार्डन को सफल बनाने के लिए नियमित देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है। पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पानी दें, लेकिन अधिक पानी देने से भी बचे क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। पौधों को पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए और समय समय पर खरपतवार हटाते रहनी चाहिए, यानी उसकी सफाई करते रहनी चाहिए। रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे जैसे सब्जियां और फलों के छिलकों को बनी कंपोस्ट खाद का उपयोग करें। पौधों की पत्तियों पर कीट या रोग दिखाई दे तो तुरंत प्राकृतिक उपाय अपनाएं, जैसे नीम का घोल का छिड़काव, नियमित निरीक्षण, मतलब उनका देखभाल नियमित, थोड़ी सी मेहनत से पौधे स्वस्थ रहते हैं और अच्छी उपज भी देते हैं। समय समय पर उनकी उचित रख रखाव जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात। अब चलते चलते हमें आरती जी ये बताएं कि आप हमारी सखियों को जो हमें सुन रही हैं क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में?
1: जी मैम, मैं अपने सखियों से यही कहना चाहूंगी कि यदि हमारे पास थोड़ा सा भी समय है, हम अपने काम से थोड़ा सा भी समय निकालते हैं, थोड़ी सी जगह है और एक छोटा सा किचन गार्डन जरूर शुरू करें। यह केवल सब्जियां उगाने का माध्यम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, आत्मनिर्भरता और प्रकृति से जुड़ने का एक सुंदर तरीका है। अपने बच्चों को भी इस कार्य में शामिल करें ताकि उनमें भी पर्यावरण के प्रति प्रेम और पौधों की देखभाल की आदत विकसित हो। याद रखिए, एक छोटा सा पौधा भी हमारे परिवार के स्वास्थ्य, घर की सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज एक गमले से शुरुआत कीजिए, कल यही छोटा सा प्रयास एक सुंदर हरा भरा और स्वर्ग जीवन का आधार बन सकता है। और जब आप इसको शुरू करेंगी तो इनके फायदे आप खुद महसूस करेंगी और अच्छा

0: अनुभव करेंगी। मैं यही कहूंगी कि इसको जरूर करें, जरूर लगा के देखें, एक बना के देखें।
1: जी आरती जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मुझे लगता है सुनकर हमारी बहनें भी उत्साहित होंगी और जरूर अपने घर में किचन गार्डन लगाएंगी।
0: जी जी मैम जी,
1: आपका बहुत।
2: बहनों अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, किचन गार्डन समय की मांग। हमारी आज की मेहमान थी आरती मिश्रा और इनसे बातें कर रही थी राखी शर्मा। तो अभी किचन गार्डन की बात हो गई राखी।
3: हाँ, और हम मैं क्या कहना
2: पौधों की ही बात कर ही रहे हैं शुरू से।
3: हाँ हाँ, और बारिश का मौसम है तो बारिश में जब बादल काले काले घिरते हैं और मोर जब अपने पंख फैला के नाचता है तो दृश्य कितना सुहाना होता है। हालांकि देखने को कम मिलता है, जीवन में कभी एक दो बार भी वो दृश्य इंसान देख ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसकी कल्पना तो हम लोग कर सकते हैं।
2: और चलो अब ये गीत सुनते हैं तो कल्पना भी अपने आप हम कर ही लेंगे, है ना।
3: उस कल्पना में बहनों को भी डुबाते हैं।

0: और निधि, चलते चलते बहनों को हम बताना चाहेंगे किशोरी शक्ति योजना के विषय में, जो कि भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है। और इसका मुख्य लक्ष्य जो है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों का सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य सुधार, पोषण स्तर को बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना है।
1: भाई बहुत अच्छी बात है राखी। और इस योजना के तहत कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण और आहार, और लड़कियों के लिए कौशल विकास और आत्मरक्षा और योग, इन सभी तकनीकों को सिखाया जाता है, और ताकि जैसा तुमने कहा कि बालिकाएं जो है उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और इसके लिए बालिकाओं का किशोरी कार्ड बनाया जाता है जिसमें उनके स्वास्थ्य का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। बालिका मंडलों का भी गठन किया जाता है जो स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि बहनें अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें और इसका लाभ उठाएं।
0: हाँ, और इसी के साथ निधि, वक्त हो गया बहनों से विदा लेने का। चलते चलते बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और निधि को दे विदा।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आभा का नमस्कार। आकाशवाणी रांची से कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जीवन की भाग दौड़ में अक्सर हम उन छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं, और कहते हैं जहां रस है वहीं जीवन है, और जहां जीवन है वहीं राग और रंग भी है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत साल 1981 की सुपरहिट फिल्म लव स्टोरी से। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत दिया है आरडी बर्मन में, और सुरों में पिरोया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में. अगला गाना जब वी मेट से, गीत को उस्ताद राशिद खान ने अपनी जादुई आवाज दी है और संगीत संदेश सैंडिल्ली का है और बोल है इरशाद कामिल के.

ये गाना है फिल्म महाराज से। इस गाने को अपनी मखमली आवाज दी है मोनाली ठाकुर ने और इसके बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

दोस्तों, संगीत के साथ साथ खुद को तरोताजा रखना भी बेहद जरूरी है। हर दिन जिंदगी हमें एक और मौका देती है हम अपनी किताबों में एक नया पन्ना जोड़ने का। हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने काम में अपना शत प्रतिशत दीजिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए आभा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण सुनिए दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राज्य की यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
2: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारे की, वो भी मना रहा है।

0: है, और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग करने स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. The grand tour culminated in spectacular sports diplomacy at the iconic Melbourne Cricket Ground. Standing on the historic turf, the two leaders officially launched the India-Australia Sports Collaboration Roadmap. Prime Minister Narendra Modi will reach Auckland today on a two-day visit to New Zealand. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India and New Zealand are celebrating 100 years of sporting ties in 2026. Hockey, which started this journey in 1926, continues to bring the two countries closer. The sporting relationship began in 1926 when the Indian Army hockey team became the first Indian sports team to tour New Zealand. Former Hockey New Zealand CEO and 1976 Olympic gold medalist Ramesh Patel says Prime Minister Narendra Modi's visit will further strengthen sports cooperation between the two countries. As India and New Zealand celebrate a century of sporting ties, hockey remains a strong bridge of friendship, connecting the people of both countries and inspiring future generations. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said clean energy met over 50% of the country's electricity demand for the second time. In a social media post, Mr. Joshi said renewable sources contributed 50.2% of the power supply on the 6th of this month. The minister called this a testament to the growing strength and reliability of India's clean energy ecosystem. He said under the leadership of Prime Minister Modi, India continues to power sustainable growth with speed and determination. Niti Aayog member Dr. Joram Aniya held interaction with UNICEF India representative Cynthia McCaffrey and her delegation in New Delhi to strengthen collaboration on child-centric development, school education and human development.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झीरी बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस और नए मेडिकल रूम का किया उद्घाटन, कहा दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार। रांची के इटकी में 50 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार, आयुष मंत्रालय की टीम ने किया जमीन का निरीक्षण। झारखंड की पकरी बरवाड़ी कोयला खदान लगातार दूसरे साल देश में पहले स्थान पर, कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दी 5 स्टार रेटिंग। और बोकारो को मिली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी, 18 से 27 अगस्त तक जुटेंगे देश के 700 दिग्गज तीरंदाज और ओलंपियन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी स्थित बायोगैस प्लांट और लिगेसी वेस्ट बायो माइनिंग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक मेडिकल रूम का उद्घाटन किया। आपात स्थिति के लिए एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर से लैस जीवन रक्षक एम्बुलेंस भी तैनाती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी दिसंबर तक टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा।
1: ये मस्ट है, किसी भी यात्री को कहीं हेल्थ इश्यू आता है तो उसको तुरंत ही हम रिलीफ दें। मणिपाल इसके 49 हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश भर के। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो रांची एयरपोर्ट है बहुत सुविधाओं से युक्त हो रहा है।
0: रांची के इटकी टीबी सेनेटोरियम परिसर की 50 एकड़ भूमि पर एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और योग केंद्र विकसित होंगे। आयुष्मान

0: मंत्रालय की टीम ने भूमि का निरीक्षण कर लिया है और जल्द ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार के दिल्ली स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स को दिखावा करार दिया है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्षों में राज्य में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाकर पीठ थपथपाने से झारखंड में कोई वास्तविक निवेश नहीं आने वाला है।
1: इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें महारत हासिल है झारखंड के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता से कई सारे उद्योग लगाने का वादा तो जरूर किया, लेकिन पिछले 7 वर्ष की सरकार में एक भी बड़ा उद्योग जो है पूरे प्रदेश में लगाने में वो विफल रहे।
0: एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की झारखंड स्थित पकरी बरवाडीह कोयला खदान को देश में पहला स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला नियंत्रक कार्यालय ने पकरी बरवाडीह ओडिशा की दुलंगा और छत्तीसगढ़ की तलाईपल्ली खदानों को 5-स्टार रेटिंग दी है। कंपनी ने इसे सुरक्षित खनन और पर्यावरण संरक्षण की बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। धनबाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिन्हित 3,000 बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सिविल सर्जन के निर्देश पर आज और 13 जुलाई को जिले के सभी प्रखंडों में प्रथम चरण का उपचार किया जा रहा है। गंभीर बीमारी वाले बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस आज आर्यभट्ट सभागार में शुरू हुआ। 3 दिवसीय समारोह के उद्घाटन अवसर पर झारखंड स्टेट एजुकेशन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नरेंद्र भगत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कुलपति ने बताया कि कल सोहराय कला पर विमर्श और पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। समापन वाले दिन पौधारोपण और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।
2: कल विद्यार्थी जो शिक्षा के नीति के अनुरूप उनका कला और संस्कृति दीर्घा और फाइन आर्ट्स का प्रदर्शन होगा और परसों जो हमारा अंतिम दिन होगा जो कि वास्तव में 12 तारीख स्थापना दिवस है उस दिन हम विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे।
0: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने चक्रधरपुर में ब्राउन शुगर तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग छापेमारी में 75 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त की। SDPO डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी ने बताया कि पुलिस इस बड़े सिंडिकेट की जांच कर रही है।
3: पुलिस के पूछताछ के क्रम में ये पाया गया है कि ये सभी लोग एक ड्रग पेडलिंग सिंडिकेट का हिस्सा, बाहर से ब्राउन शुगर लेकर आते थे चक्रधरपुर में, छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचा करते थे। तो एक बड़े नेटवर्क को इसी तरह 2 बैक-टू-बैक छापामारी करते हुए ध्वस्त किया गया। इसमें और भी हमारे पास इनपुट्स हैं और लीड्स हैं जिस पर अभी अनुसंधान जारी है।
0: सरायकेला खरसावां में आगामी रथ यात्रा महोत्सव को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने नगर क्षेत्र का पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान रथ यात्रा समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.9% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 666 अंक चढ़कर 77,400

पर और निफ्टी 198 अंक बढ़कर 24,161 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में सक्रिय मॉनसून के बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। 12 और 13 जुलाई को रांची, लातेहार, लोहरदगा और गुमला के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में गोड्डा में सबसे अधिक 44.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बोकारो में 18 से 27 अगस्त तक एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन होगा। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करीब 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तीरंदाजी संघ के जिला अध्यक्ष लंबोदर महतो ने बताया कि इसमें देश के बेहतरीन तीरंदाज, ओलंपियन और राष्ट्रीय कोच शिरकत करेंगे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे गजल हरिहरन की आवाज में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार का प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से।

0: advise people to remain cautious and avoid venturing near water bodies. As a precautionary measure, all educational institutions in Sirmaur and Solan districts have been closed today. Continuous rainfall has also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
1: In the FIFA World Cup in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on a two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य

0: कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने

0: कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनाव का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष फल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
2: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरत नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे

0: साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम जय भारती में, और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आभा। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहला गाना फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से, आवाजें हैं उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक और कैलाश खेर की। संगीत अनु मलिक का है और गीतकार हैं समीर।

0: जी हाँ, हवाओं से नहीं, फौजियों की सांसों से लहराता है तिरंगा। वो तिरंगा जिसे हम त्योहारों में थामते हैं, वो रोज किसी फौजी के खून पसीने और अधूरी नींद से जिंदा रहता है। जब हम अपनों के साथ हंस रहे होते हैं, तब कोई सरहद पर खामोशी से खड़ा अपने घर, अपने माँ बाप, अपने बच्चों की तस्वीर जेब में रखकर पूरे देश का घर संभाल रहा होता है। उसे ठंड नहीं लगती क्योंकि वर्दी के नीचे वतन की आग जलती है। उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसके दिल में तिरंगे का भरोसा बसता है। हर गोली से पहले उसकी एक ही दुआ होती है, मेरे बाद भी मेरा भारत सुरक्षित रहे। हमारे लिए आज़ादी एक एहसास है पर उनके लिए एक जिम्मेदारी। हमारे लिए तिरंगा एक पहचान है पर उनके लिए सांसों से बंधा हुआ वादा। सलाम है उन फौजियों को जो जीते भी देश के लिए हैं और अगर जरूरत पड़े तो मुस्कुराते हुए मिट जाते हैं भारत माँ के लिए। अगला गाना सुनिए 1997 की सुपरहिट देशभक्ति और रोमांटिक फिल्म बॉर्डर का मधुर गीत, जिसे रूप कुमार राठौर ने अपनी शानदार आवाज दी है, संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है और इसके बोल मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं।
1: है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: Medicina!
1: आकाशवाणी रांची से फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती का आप प्रसारण सुन रहे हैं। अगला गाना फिल्म अभिलाषा से, संगीत आरडी बर्मन का है, रचना

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाने को कहा। 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। बैठक में एएसडीडी सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र भरकर जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर एआई वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता लेने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही फॉर्म भर सकते हैं, गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने टीजीटी नियुक्ति परीक्षा 2016 में विलंब से नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने समान वरिष्ठता, अपग्रेड वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने अजय कुमार सहित 8 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रहे बदलावों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर अंसारी ने विशेष रूप से रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रिम्स 2 के शुरू होने से झारखंड के मरीजों को राज्य में ही आधुनिक और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। डीजीपी ने नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान तेज करने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम लोगों में सुरक्षा के प्रति विश्वास मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। बैठक में कोल्हान प्रमंडल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची समाहरणालय में आम नागरिकों की सुविधा के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 नई आधुनिक लिफ्टों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में संचालित लिफ्टों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। नई लिफ्टें सेल्फ रेस्क्यू प्रणाली सहित अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिससे बिजली बाधित होने की स्थिति में भी यात्रियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित होगी। सिमडेगा जिले में ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन समिति के सदस्यों के अनुसार रथ यात्रा शुरू होने के बाद 9 दिनों तक विभिन्न बस्तियों के लोग बारी बारी से भगवान को महाप्रसाद का भोग अर्पित करते हैं।
1: खास बात है कि 9 दिनों तक लगातार रथ यात्रा के बाद महाप्रसाद भोग लगाया जाता है और वितरण कराया जाता है, जिसमें 100 से 150 केजी भोग लगाया जाता है। और यह व्यवस्था गांव के लोग करते हैं, सबका बस्ती बांटा हुआ है, किस दिन किस बस्ती को करना है। किसी दिन ब्राह्मण बस्ती को है, तो राउत बस्ती को है, तो नीचे बस्ती को है।
0: दुमका जिले में मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ने 190 चिन्हित गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 133 गांवों का कार्य पूरा हो चुका है। अब तक 1025 घरों में मीटर लगाकर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। सरायकेला खरसावा के गम्हरिया में सीआईएससीई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले चरण के लिए किया जाएगा।
2: सीआईएससी सिस्टम में है और दिल्ली का जो काउंसिल सीआईएससी, 2 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं खेल में। खेलो इंडिया एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उसी हिसाब से इस साल हर एक बच्चे से 100 रुपया करके लोग कलेक्ट किए हैं।
0: और इसके साथ ही

रांची मेलोडीज का अगला गाना है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का, और फिल्म है साजन।

अगला गाना फिल्म बड़े दिलवाला से रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत आरडी बर्मन का, और इस गाने को अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

प्राची मेलोडीज का आखिरी गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। योगेश के बोल हैं, संगीत सलील चौधरी का और फिल्म है आनंद।

ये था रांची मेलोडीज का एक छोटा सा सफर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ और नगमों के साथ। तब तक के लिए आप हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाने को कहा। 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। बैठक में एएसडीडी सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर एआई वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता लेने की भी अपील की। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी स्थित बायोगैस प्लांट और लिगेसी वेस्ट बायोमाइनिंग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रांची समाहरणालय में आम नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 नई आधुनिक लिफ्टों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में संचालित लिफ्टों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के गुरतुर गांव में ओझा गुणी के शक में 65 वर्षीय केशव राम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के बाद मौके से आरोपी महिला सुनीता कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में सीआईएससीई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से सुनिए उर्दू प्रोग्राम। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: सामना करना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल सामीन, आबादी का बढ़ना फिजात खुद यानी अपने आप में कोई गुनाह या बुराई नहीं है, क्योंकि हर इंसान इस सरजमी पर काम करने के लिए दो हाथ और सोचने के लिए एक जहन लेकर पैदा होता है। लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल तब पैदा होती है जब मसाइल महदूद हो जाते हैं और हिस्सेदार बेतहाशा बढ़ जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, अगर हम ठंडे दिमाग से गौर करें तो ये बात बिल्कुल साबित होती है। जब किसी कुंबे में मुसाफिर ज्यादा आ जाएं और रिस्क कम हो तो यकीनन नज्म जब्त बिगड़ जाती है। यही सूरत हाल आज हमारी इस जमीन की है। इस तेजी से बढ़ती आबादी का सबसे पहला और बराह रास्त असर हमारे कुदरती वसाइल पर पड़ रहा है। पीने का साफ पानी, जरखेज जमीन और खालिस हवा, ये सब धीरे धीरे नायाब होते जा रहे हैं।
1: और दूसरा बड़ा चैलेंज है माशी इस्तेकाम यानी आर्थिक स्थिति और रोजगार। आज का दौर डिजिटल दौर है जहां जदीद तकनीक तेजी से इंसानों की जगह ले रही है। ऐसे पुर आशूब वक्त में हर साल करोड़ों नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार फराहम कराना एक अजीम मका बन चुका है। जब आबादी के तनासुब में मुलाजमतें नहीं होती तो गुर्बत यानी गरीबी, अफसोर्दगी और समाजी बेराह रवि को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा हमारी बुनियादी सहूलियतें जैसे तालीम और सेहत पर भी आबादी का शदीद दबाव है।
0: तो फिर सवाल ये उठता है राजदा कि क्या हमारा मुस्तकबिल अंधेरा है, क्या इस मसले का कोई सोल्यूशन नहीं है? तो राजदा इसका सोल्यूशन है, हमारी इस बढ़ती आबादी में सबसे बड़ी ताकत है हमारी युवा आबादी। हमें इस भीड़ को महज एक तादाद नहीं बल्कि एक अजीम इंसानी सरमाया यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बनाना होगा। इसके लिए दो मोर्चों पर काम करना लाजमी है। पहला तो ये कि तरबियत और हुनरमंद तालीम दें। जब हमारे नौजवानों के पास जदीद दौर के मुताबिक हुनर होगा तो वे मुलाजमत ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। और जो दूसरा हमारा मोर्चा है वो है बेदारी यानी कि जागरूकता। हमें महदूद खानदान यानी छोटे परिवार की अहमियत को तस्लीम करना होगा ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को एक बेहतर, पुरअमन और महफूज मुस्तकबिल सौंप सके। तो राजदा मुस्तकबिल को सवारना किसी एक मर्द या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब की ये सबसे बड़ी साझेदारी है।
1: और इसी मकसद से शगुफ्ता हर साल 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं ताकि इसमें लोगों को अवेयर किया जा सके कि छोटा परिवार खुशहाल परिवार। पर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बातें करते हैं डिजिटल दौर में नए हुनर और नए मौकों की। हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है और यूथ स्किल डे मनाने के पीछे भी मकसद साफ है कि कैसे युवाओं के अंदर जो हुनर है उसे तराशा जाए।
0: सही कह रही है राजदा, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सुबह की शुरुआत अखबार की सुगबुगाहट से नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर आने वाले नोटिफिकेशन से होती है।
1: बिल्कुल, हम डिजिटल दौर में हैं। ये एक ऐसा क्रांतिकारी वक्त है जिसने हमारे बात करने, जीने और यहाँ तक कि कमाने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया है।
0: हाँ राजदा, लेकिन आज के डिजिटल दौर ने इसे थोड़ा बदल दिया है। आज आँख जो कुछ देखती है और दिमाग जो कुछ सोचता है उसे एक क्लिक के जरिए पूरी दुनिया के सामने लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर लोग डरते हैं कि कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के आने से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच तो ये है कि तकनीक जब भी बदलती है वह पुरानी नौकरियों को खत्म जरूर करती है पर अपने साथ उससे कहीं ज्यादा नए रास्ते और नए मौके भी लेकर आती है। शर्त बस इतनी है कि वक्त के साथ हमें अपने हुनर यानी कि अपने स्किल को बदलना होगा।
1: और आज के इस डिजिटल दौर में डिग्री से ज्यादा डिलीवरी, काम करने की काबिलियत की अहमियत है। तो आइए कुछ ऐसे हुनरों की जानकारी हम अपने दोस्तों को दें जिनकी आज बाजार में काफी डिमांड है।
0: रास्ता जरूर बताएं आप।
1: जैसे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया, आज हर छोटा बड़ा बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है। ऐसे में जो लोग इंटरनेट के जरिए सामान बेचना या ब्रांड बनाना जानते हैं उनके लिए मौकों की कोई कमी नहीं है। कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट, हमारे फोन में मौजूद हर ऐप किसी न किसी का हुनर है। कोडिंग आज के दौर की नई भाषा बन चुकी है। उसी तरह कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग, अगर आपके पास कोई अनोखी बात है, कोई फन है या आप अच्छा लिख और बोल सकते हैं तो पूरा YouTube, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया आपका

0: मंच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शगुफ्ता, जैसा कि आपने बताया, एआई और डेटा, ये फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत है। डेटा को समझना और एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करना आज का सबसे बड़ा हुनर बन चुका है।
1: सामीन, इन हुनरों की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं? तो मैं बताती चलूं कि इनके लिए आपको किसी बड़े शहर में जाकर महंगी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और सीखने का जज्बा है, तो आप अपने गांव या कस्बे के छोटे से कमरे में बैठकर भी अमेरिका या यूरोप की किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। इसे ही हम आज की भाषा में वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांसिंग कहते हैं। डिजिटल दौर ने भौगोलिक दूरियों को मिटाकर पूरी दुनिया को एक बाजार बना दिया है, लेकिन याद रखिए, इस समुंदर से मोती वही निकाल पाएगा जो तैरना सीखेगा। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे युवा रटी रटाई एजुकेशन से आगे बढ़कर नए हुनर को सीखें, खुद को अपग्रेड करें। तो देर किस बात की राजदा, आज ही से एक नया हुनर सीखने की शुरुआत कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि डिजिटल दौर का मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है।
0: तो शगुफ्ता, बातें हम और करेंगे, कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर बात करना बेहद जरूरी भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो उस पर बात करने से पहले आइए अपने दोस्तों को सुनाते हैं एक मकाला, साइंस में ख्वातीन, इल्म, सलाहियत और तरक्की की दास्तान। मकाला निगार है काजमीन फातिमा।
2: साइंस में ख्वातीन की इल्मी सलाहियत और तरक्की की एक ऐसी दास्तान है जो सदियों की मेहनत, जद्दोजहद, हिम्मत और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। एक तवील जमाने तक हम ख्वातीन को खानादारी तक ही महदूद रखा गया था। हमारी तस्लीम को मायूब समझा जाता रहा था। तालीम नहीं होने की वजह से हम इस्तेहसाल और मजलूमियत के शिकार होते रहे। मगर वक्त ने करवट ली और काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हमने अपने हक की आवाज उठाई। हमने दुनिया को ये दिखाया कि दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म में औरतों को तालीम से, तिजारत से, सियासत से, मुलाजमत से नहीं रोका गया है। यहाँ तक कि माँ का गोद बच्चों का प्राइमरी स्कूल होता है, इस बात को तस्लीम की गई है। हमारी आवाज़ को अहले इल्म, दानिश्वरान, इंटेलेक्चुअल्स की जमात ने गहराई से कबूल की और आज नतीजा दुनिया के सामने है। जिंदगी के हर शोबे में आज हम कामयाब हैं और अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े होकर अपने मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे कारनामे सुनहरे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि नोबल इनामात हासिल करने वालों में भी हमारा नाम दर्ज हो चुका है। साइंसी मैदान भी हमसे अछूता ना रहा। साइंस के मैदान में हम भारतीय ख्वातीन की हिस्सेदारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन आज भी तादाद व शुमार के एतबार से हम अपने भाइयों से कम हैं। हुकूमत के साथ साथ तालीमी इदारों, फलाही जमातों और तंजीमों को इस पर मजीद गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। साथ में ये कि हम ख्वातीन, महिलाओं, औरतों को भी अपनी तालीम और तरबियत को लेकर ख़ास तवज्जो की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके बावजूद भी अदबी तहकीक यानी लिटरेचरली रिसर्च, जिसे आप साहित्यिक अनुसंधान कह सकते हैं, या साइंसी तहकीक, इन दोनों शोबों में हमारा नुमाया किरदार है। अपने मैंने साइंस में ख्वातीन की इल्मी सलाहियत पर रोशनी डालने की कामयाब कोशिश की है। चंद खास नाम जो अभी मेरे जहनो गुमान में आ रहा है वो ये है कि लारा बासी यूरोप की पहली खातून जो फिजिक्स की प्रोफेसर बनी, जिन्होंने बोलोनिया यूनिवर्सिटी में फलसफे की 6 मकाले लिखे। 19वीं सदी ख्वातीन के लिए बहुत ही अहम रहा, लेकिन ख्वातीन के लिए कॉलेज ने उन्हें तालीम और मुलाजमत के मौके दिए, जिसमें मारी क्यूरी जैसी साइंसदान ने तिब्बियाती यानी मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री में नोबेल इनाम हासिल करके ये साबित कर दिया कि कुदरत ने जहानत में हमें अपने भाइयों से कमतर नहीं बनाया है। मेरे क्यूरी के बाद 2025 तक 66 ख्वातीन ने साइंस और अदब के मैदान में नोबेल इनाम हासिल किए हैं।

अमन शांति में 18 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं, अदब साहित्य में 16 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं, फिजिक्स और मेडिकल साइंस में 12 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं, केमिस्ट्री में 8 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं, फिजिक्स में 5 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं और मईशत में 1 ने नोबल इनाम हासिल किया। हाँ, यहाँ अफसोस का मकाम ये है कि भारत से बराहे रास्त कोई भी खातून मेरे इल्म के मुताबिक नोबल इनाम याफ्ता नहीं है, लेकिन मदर टेरेसा 1979 में अमन इनाम के तहत नोबल प्राइज हासिल की है, जबकि उनकी पैदाइश अल्बानीन में हुई और इसके बावजूद उनको भारत की शहरियत हासिल है और कलकत्ता से उनकी गहरी लगाव रही। भारत के चंद नोबल प्राइज याफ्ता के नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं पेश करना चाहूंगी और वो ये हैं। पहला रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबल इनाम हासिल किए। सीबी रामन 1930 फिजिक्स में नोबल इनाम से नवाजे गए। तीसरा मदर टेरेसा 1979 अमन में नोबल इनाम हासिल किए। चौथा अमृत्या सेन ने 1998 मईशत में नोबल इनाम हासिल किया। पांचवा वेंकट रामन रामेश्वरी 2009 केमिस्ट्री में नोबल इनाम हासिल किए। कैलाश सत्यार्थी 2014 अमन में नोबल इनाम हासिल किए। सातवां हरगोबिंद खुराना को 1968 मेडिकल साइंस में नोबल इनाम से नवाजा गया। नौवां अभिजीत बनर्जी को 2019 अर्थशास्त्र में नोबल इनाम से नवाजा गया। इनके अलावा दो नाम और हैं जिनकी पैदाइश भारत में हुई लेकिन वो ब्रिटिश नागरिक थे, और जैसा कि मैंने बताई कि हिंदुस्तानी खवातीन ने साइंस के मैदान में नुमाया किरदार अदा की हैं और अपनी कामयाबियों की शानदार दास्तान लिखे हैं। उन्होंने खलाई तहकीक में यानी अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस से लेकर एटमिक एनर्जी तक हर शोबे में संगमेल कायम किए हैं। अगर मैं अपने इस मकाले में उन ख्वातीन का नाम पेश ना करूं तो नाइंसाफी होगी। तीशा सारोखा इसरो की पहली खातून साइंसदान थी जिन्होंने 1971 में रोहिणी सैटेलाइट मिशन कलेदी किरदार अदा किया। 1971 में रोहिणी सैटेलाइट मिशन में कलीदी किरदार अदा किया। कल्पना चावला जो हिंदुस्तानी निजात अमरीकी थी, नासा की पहली खातून अंतरिक्ष की पहली मुसाफिर थी और 2003 में कोलंबिया मिशन में शरीक हुई। इसी तरह से अगर हम बात करें हुमायूं वहाबा शिरीर की, तो ये मोहतरमा इंडिया की न्यूक्लियर बम माँ कहलाती हैं, जिन्होंने 1960 से 1970 की दिहाई में भारतीय एटम प्रोग्राम को मजबूत बनाया। टीसु जासोधनी राजा निक्सु की मिसाइल वुमेन थी जिन्होंने अग्नि त्रिशूल और आकाश मिसाइल की तरक्की की। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम के साथ मिसाइल की तख्लीकी अमल में नुमाया किरदार अदा किया। इसी तरह से अगर हम बात करें आरपी फिरहास की, तो वो बायोलॉजिकल साइंसदां थी जिसे उर्दू में हयातियाती साइंसदां कहा जाता है। उनकी तहकीक भी हमारे लिए काबिले कद्र हैं। उन्होंने टीबी और मलेरिया की तहकीक की। इसी तरह से प्रोफेसर कमीला सिंह की तहकीक की अगर हम बात करें, तो उन्होंने जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री में ग्लोबल लेवल पर खिदमात अंजाम दिए। डॉक्टर रितु कर्नाढल को रॉकेट वुमेन कहा जाता है जो मंगलयान चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही। कल्पना कलाहस्ती चंद्रयान 3 की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी जो कि सैटेलाइट इमेजिंग में माहिर हैं। निगार साजी आदित्य L1 सूरज मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही जिन्होंने इसरो में काम किया। रीमा घोष ने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोरो की रोबोटिक्स डिजाइन की। निधि पोरवाल लैंडिंग मॉडल की माहिर थी। आदादो शुमारी के एतबार से अगर देखा जाए तो 16,000 मुलाजमीन में 20 से 25% खवातीन इसरो जैसी

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति थी राजदा हुसैन और शगुफ्ता बानो की। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

मीडियम पे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते चले, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। ये कार्यक्रम होगा 4:35 पर। 5 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का।

5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। चर्चा का विषय होगा पेरेंट्स के साथ समय बिताएं। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर खेती बाड़ी और हमारी दुनिया।

7 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। हो भाषा में आप कार्यक्रम सुनेंगे आदिवासी अखड़ा 7:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम सहिया का वक्त होगा 7:45 पर। फिल्म संगीत रजनीगंधा का वक्त है रात्रि 8 बजे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधित जानकारी, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म कहो ना प्यार है से उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है।

कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुना रहे हैं फिल्म बलमा से। गाने के बोलों को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ है।

कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म आदमी खिलौना है से। समीर के बोलों को संगीत बद्ध किया है नदीम श्रवण ने, गाने को गाया है अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम FM 103.3 MHz पर। ये आकाशवाणी रांची है। शाम के 5 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन औद्योगिक संवर्धन और निवेश पर उच्च स्तरीय मंथन हुआ, जिसमें झारखंड को देश के अग्रणी औद्योगिक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और कुशल मानव संसाधन के माध्यम से औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में नक्सली विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। बोकारो जिले में नष्ट की जाने वाली करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने डिपो मैनेजर और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में आज भीखी तालाब में डूबने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं घायल हो गईं। खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि तालाब में डूब रही एक युवती को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

तीन मिनट होने को है। श्रोताओं, सांध्यकालीन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ छवि। अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम बता देते हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर हम आपको सुनवाएंगे एक ही गीत का गुलजार के लिखे कुछ फिल्मी गीत। संध्या के 5:30 से 6 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी झारखंड राज्य में मिलेट योजना के बारे में। इसके अलावा आप सुनेंगे होलो की सुभाष चंद्र होनागा और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता आप सुनेंगे व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन कैसे करें। भेंटवार्ता कर रहे हैं संयोग कुमार बांद्रा और उनसे बातें कर रहे हैं सुरेश चंद्र सोय। लोकगीत आप सुनेंगे पंच परगनिया में ब्रजमोहन लोहार और साथियों के स्वर में। बाजार भाव बतलाया जाएगा। इसके साथ ही आपको हम कुछ संदेश भी सुनवाएंगे। संध्या के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:30 पर हो, माफ कीजिएगा श्रोताओं, 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा, जिसमें चर्चा की जाएगी आधुनिक युग से कंप्यूटर। मनोरंजन होगा हो हैरो दुरंग से सुभाष चंद्र होनहाका और साथियों के स्वर में। इसके अलावा भेंट वार्ता आप सुनेंगे। आहंदी लोकगीत आप सुनेंगे बानती घाघराई और साथियों के स्वर में। संध्या के 6:30 पर होगा बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया, जिसमें जानकारी दी जाएगी राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के बारे में। इसके अलावा बच्चे सुन सकेंगे कहानी कविता और बाल कविताएं। इसमें बच्चों के साथ मिल रही हैं अंजू रानी देवगम। 6:55 पर आपको हम लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 से रात्रि के 8 तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 से 8:45 पर होगा फरमाशी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा। 8:45 पर आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 से 9:15 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि के 9:15 से 10 तक आप सुन सकेंगे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 से 10:30 पर होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 से रात्रि के 11 तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि के 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि के 11:10 में हमारे सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीत का गुलजार के लिखे कुछ गीत।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। इस समय संध्या के 5

0: श्रोताओं, इस समय 5:06 हो रहे हैं। आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार गुलजार के लिखे कुछ गीत। आप सबको छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म आनंद का ये नगमा, मुकेश की आवाज में सलील चौधरी के संगीत पर।
1: मैंने

श्रोताओं आप सुन रहे थे आंधी फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आज आपको सुनवा रहे हैं एक ही गीतकार गुलजार के लिखे कुछ गीत। आर डी बर्मन का संगीत था और गुलजार के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है गुरु। श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाजें हैं, संगीत है ए आर रहमान का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार गुलजार के लिखे कुछ गीत छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है आशीर्वाद। लता मंगेशकर की आवाज है, बसंत देसाई के संगीत पर।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना एक ही गीतकार गुलजार के लिखे कुछ गीत। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोए का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा में हम बातें करेंगे झारखंड राज्य मिलेट्स मिशन पर, अर्थात मोटे अनाज का महत्व विषय पर। मनोरंजन करेंगे हो लोकगीत से और भेंटवार्ता के माध्यम से भी हम बेरोजगारों के लिए रोजगार से संबंधित, जिनके पास पूंजी नहीं है, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर संचालित प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना पर हम भेंटवार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। श्रोताओं, मानव शरीर रूपी कोशिकाओं को स्वस्थ और सही उनका विकास हो, इसके लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है और पोषक तत्व हमें खाद्य पदार्थों से मिलती है। झारखंड जैसे पठारी क्षेत्र में जहां वर्षा कम हो, ऐसी स्थिति में मोटे अनाजों की खेती से भी हम अपनी आर्थिक संपन्नता को बढ़ा सकते हैं और रोजगार के अवसरों का हम सृजन कर सकते हैं। इसी संदर्भ में झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य मिलेट्स मिशन एक योजना चलाई है। वर्षा की कमियों को देखते हुए

या योजना कृषि को सहनशील और टिकाऊ बनाती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में विविधताएं भी लाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में धान की खेती के अलावा पानी कम होने के कारण दूसरे फसलों की खेती नहीं की जाती है, परिणाम स्वरूप खाद्य सुरक्षा जैसी बातें सामने आती है। यूं तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, परंतु इस मोटे अनाज की खेती से हम खाद्य सुरक्षा में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जिनके पास बड़ी बड़ी खेत है परंतु छोटे एवं सीमांत किसान जिसके पास न्यूनतम 10 डिसमिल जमीन हो, ऐसे किसानों के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत उन्हें लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। जो छोटे किसान हैं, मोटे अनाजों की खेती से प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिलता है, परिणाम स्वरूप रोजगार का सृजन होता है और बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होती है, परिणाम स्वरूप कुपोषण गरीबी जैसी समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। झारखंड सरकार की इस योजना का लाभ झारखंड का निवासी को होना मिलता है, साथ ही साथ उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और झारखंड राज्य का किसान भी होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेजों के रूप में भू स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की जरूरत होती है, जिसे हम खतियान कह सकते हैं। वंशावली का सत्यापन भी जरूरी है कि उस गांव में अमुक व्यक्ति रहता है। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल इत्यादि की भी जरूरत होती है। आवेदन हम ऑनलाइन के माध्यम से हमें पंजीकरण कराने की जरूरत है। न्यूनतम 10 डिसमिल जमीन जिसके पास है उसकी वो खेती कर सकता है, लाभ ले सकता है। अंतिम तिथि प्राप्त सूचना के अनुसार से 20 अगस्त तक है और इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये सहायता प्राप्त होगी और एक किसान अधिकतम 5 एकड़ खेत में मोटे अनाज की खेती कर सकता है, उसका लाभ ले सकता है, अर्थात 15,000 रुपये का सहायता उन्हें प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने आसपास के प्रखंड कार्यालयों में या आत्मा जो स्वतंत्र शासी निकाय है झारखंड सरकार की, उससे भी हम संपर्क कर इस योजना के संबंध में अधिक से अधिक हम जानकारी ले सकते हैं। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं, अभी हम मनोरंजन कर रहे थे हो लोकगीत से। इस लोकगीत के बाद आइए हम केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस योजना के तहत हम किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, जानकारी लेते हैं केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक से।
1: कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, केंद्र सरकार चाहती है कि देश आत्मनिर्भर बने, सबका साथ सबका विकास। इसी परिकल्पना को पूरा करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री ने बैंकों से संबंधित एक ऋण

0: से संबंधित एक योजना लागू किया है जिसको हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के संबंध में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हुए हमारे ब्रांच केनरा बैंक चाईबासा। तो हमारा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जोहार।
1: जोहार, मेरा नाम जेके पिंगुआ है, मैं वर्तमान में केनरा बैंक कमलातो शाखा में ब्रांच मैनेजर हूँ और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं मुद्रा योजना के बारे में।
0: तो ये मुद्रा बैंक योजना की आवश्यकता आपकी नज़र में क्यों जरूरत पड़ी?
1: मुद्रा योजना के बारे में इसकी पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो हमारा भारतवर्ष जो हमेशा से रहा खेती पे ही निर्भर रहा, तो सन 2015 में जब गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे देश को नए सिरे से बनाना है तो उसने उद्यमों पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया।
0: अच्छा।
1: और उसमें भी उद्यमी जो व्यवसायी लोग हैं वो जो छोटे व्यवसाय जिन पर कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, तो ये मुद्रा लोन एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए ही फोकस्ड करके ये बनाई गई थी।
0: अच्छा, ये तो छोटे उद्यमी की आप बात कर रहे हैं, किस प्रकार के छोटे उद्यमी, इसमें कौन कौन आते हैं?
1: छोटे उद्यमी दैट मीन्स कि ये आपके चाय बनाने वाले भी हो सकते हैं, सब्जी बेचने वाले, या फिर दुकानदार, जो छोटे दुकानदार जो अपना व्यवसाय जस्ट शुरू किए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनको पूंजी के अभाव में अपना बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ऐसे व्यवसाय। और इसमें ऐसे व्यवसाय भी हैं जो सालों से कर रहे हैं लेकिन उनको और पूंजी की आवश्यकता है लेकिन वो अपने व्यवसाय को और आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इस तरह के सभी तरह के लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो सब इस चीज के लिए एलिजिबल।
0: अच्छा, तो क्या ये जैसे राशन दुकान है या चाय घुंटी के साथ साथ जो सुबह ठेला गाड़ी लेके चलते हैं या शाम को, या साइकिल दुकान खोलना चाहता है, या कंप्यूटर, ये सारे के सारे इसमें आते हैं?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्रा स्कीम में सारे जो भी अपने बिजनेस जो कर रहे हैं ये सारे मुद्रा स्कीम में आप क्लासिफाइड हो सकते हैं। तो मुद्रा स्कीम आप 10 लाख रुपए तक के ऋण बैंक से ले सकते हैं, तो ये आपके अपने जरूरत के हिसाब से आप उसमें ऋण ले सकते हैं। आप बैंक जाइए, आपको कितने की जरूरत है उस हिसाब से बात कीजिए, वो आपको प्रोवाइड करें।
0: अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत जो बैंकों की जो अपने अपनी सुविधाएं हैं, जो इसमें कितने प्रकार के कैटेगरी किए गए मुद्रा बैंक में?
1: ये मुद्रा में भी दो तीन कैटेगरी जैसे ना है ना, जैसे 50,000 तक के लोन है तो उसमें मुद्रा शिशु में वो आते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, उसके बाद 50,000 से 5 लाख रुपए तक का भी एक प्रावधान है जिसमें वो उसको हम लोग ने किशोर में किया हुआ है और उसके ऊपर 5 से 10 लाख रुपए तक के लोन वो तरुण में आते हैं।
0: अच्छा, यानी शिशु, किशोर और तरुण, ये तीन प्रकार।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें आप अपने जरूरत के हिसाब से बैंक में जा सकते हैं। जैसे आपने बिजनेस शुरू करना ही है, कोई भी नया व्यवसाय एकदम आप स्टार्टिंग पहला कदम ले रहे हो, तो आप 50,000 रुपए तक का लोन के लिए आवेदन दे सकते हो। आपको बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम के लिए वो लेना चाह रहे हो। आप जाइए बैंक में, हम ये भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो ठीक है, बैंक इसी काम के लिए है, आप लोग का मदद करने के लिए वो करेंगे आपको।
0: अच्छा, इसमें और एक जानकारी दीजिए, क्योंकि यदि 50,000 का कोई लेना चाहता है तो क्या उसके लिए अपनी दुकान चाहिए या भाड़े पर या लीज पर या किस प्रकार का उसको?
1: देखिए, 50,000 तक का जो लोन है इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर है तो लेकर के आ सकते हैं और मिल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा दुकान शुरू किया है, मुझे 50,000 रुपये तक की पूंजी की आवश्यकता हो रही है, तो वो उसके लिए 50,000 रुपये तक के लिए उतना बेसिकली ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बस बैंक के अधिकारी एक बार आपका जहाँ पे दुकान है या फिर आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, एक बार देखने जाएंगे, उसके बाद आपका लोन तुरंत हो जाएगा।
0: अच्छा, ये तो बहुत सारे बैंकों को या बहुत सारे बैंक अभी ऋण दे रहे हैं, तो इसमें जो मार्जिन मनी या सिक्योरिटी मनी की बात आती है, क्योंकि हमारे जो गरीब वर्ग हैं, जो बेरोजगार हैं और नए नए आते हैं, तो उनको इस बात का डर लगे रहता है कि कहीं हमें, मेरे पास उतना मार्जिन मनी नहीं है या सिक्योरिटी मनी, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, इसीलिए लोग बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, तो इस ऋण में इस प्रकार के मार्जिन या गारंटर की कोई प्रावधान नहीं है?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप देखिए बहुत कम मार्जिन में आप इस तरह का लोन ले सकते हो। 50,000 रुपए तक के लोन के लिए सबसे कम 5% मार्जिन लगता है जो ये मुद्रा लोन के लिए है, तो आप इसके लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। 50,000 रुपये बैंक आपको देगी। आप पहले कोई अपना बिजनेस करोगे तो उसमें 5-10 हज़ार रुपये आप लगाओगे ही, तो आपका मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो
0: अच्छा,
1: 50,000 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
0: और ये जो 50 से 5 लाख तक का,
1: तो ये देखिए मुद्रा लोन में आपको दो तरह की फैसिलिटीज मिलती है। बेसिकली 50,000 तक में हम लोग सावधि लोन, जो टर्म लोन बोला जाता है, एक अवधि के लिए आपको लोन दिया जाता है, उसी अवधि में आपको लोन चुकाना
0: भी पड़ता है।
1: लेकिन जो 50,000 से ऊपर तक के वाले लोन होते हैं, 50 से 5 लाख तक में, आपको कुछ मशीनरी खरीदने, जैसे आप कोई मशीन लगाना चाहते हो, उससे कुछ सामान बना के उसको बेचना चाहते हो, तो उसको उसके लिए आपको टर्म लोन मिलता है। उसके लिए आप मशीन जो खरीदना चाहते हो उसका कोटेशन लेके आइए, है ना, या फिर आपका दुकान ही है तो दुकान में आप पहले से चल रहा है, कुछ सामान चल रहा है, तो उसके लेन देन के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा, जो बेसिक हमेशा ज्यादातर जो दुकानदार वगैरह है वो ओवरड्राफ्ट सुविधा लेते हैं, तो ये दोनों सुविधाएं हैं। तो उसके लिए आपको कोटेशन चाहिए अगर टर्म लोन के लिए, तो आप सिंपल सा है कि आप जो सामान खरीदना है उसका जो दुकान से आपको लेना है वहां से लेके आइएगा, उसके बेस पे आपको तुरंत फाइनेंस होगा।
0: अच्छा, इसमें जहां आप सामान की बात कहें, तो हमारे इस क्षेत्र में जैसे ककून है, धागा करण का है, तो उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। और यदि हम गांव की ओर जाएंगे जहाँ बेरोजगार लोग हैं, वहां पर राइस मिल या चावल मिल या तेल मिल है, तो क्या इसे जो 5 लाख से जो आपका 5 लाख तक का जो है, क्या इसमें ये आ सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए आपका जरूरत के हिसाब से इसमें आपको कैटेगराइजेशन किया जाएगा। अगर आपको 10 लाख आपको कुछ मशीनरी लगानी है, उसका दाम अगर 7 लाख या 8 लाख रुपए है, तो आपको तरुण में, आपको मशीन तरुण में क्लासिफाई करके मुद्रा लोन दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें मुद्रा लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें मशीनरी खरीदने के लिए आप ज्यादा अमाउंट का भी ले सकते हो, कम अमाउंट का भी ले सकते हो, आप अपने जरूरत के हिसाब से यूज करें।
0: अच्छा, तो और एक जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को, यदि मशीनरी की बात आती है तो क्या इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ती है कि साल में मेरा इतना इनकम होगा, हम चुका पाएंगे, इस प्रकार की कुछ प्रावधान है इसमें, किस प्रकार का?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जब 5 लाख रुपए से ऊपर का कुछ लोन लेने जाते हो, तो आपको आपके यहाँ कम से कम आपका आय आपने पहले से कमाए किया होगा, आपने पहले से काम कर रहे हो, तब आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए इतना थोड़े ज्यादा अमाउंट का ले रहे हो, तो उसके लिए जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न, जो आयकर हम लोग भरते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। मैं इस पे थोड़ा जोर देना चाहूँगा, जो भी हमारे व्यवसाय कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, लोग सालों से व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोग अच्छा कमा भी रहे हैं, लेकिन वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो इस जिस वजह से ना इनको जब बैंक जाते हैं ये लोग, तो उनको ये दस्तावेज मांगा जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम हम कैसे, आप कितना कमाते हो वो हम कहाँ से पता चलेगा। तो इनकम टैक्स अगर आप फाइल करते हो, तो वो एक कह सकते हैं कि आपका एक दस्तावेज बन गया कि हाँ मेरा इतना साल का कमाई होता है, और इसी से हम आपसे जो लोन लेंगे तो इसी से हम चुकौती करेंगे।
0: अर्थात ये जो इनकम टैक्स है, मतलब आय ज्यादा ना होते हुए भी हमको चुकाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना, जैसे अभी हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा तो ये निर्धारित की है, तो हमें अपना इनकम टैक्स बिल्कुल चुकाना चाहिए, और उसे अपने हर साल अपने दस्तावेज में रखना, जमा करते जाना चाहिए। इससे ये होगा कि आप कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ा लोन लेने के, तो आप बैंक में जब जाइएगा तो ये पेपर हमेशा आपके यहाँ रहेंगे, और आपको लोन लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये बड़े लोन के लिए, अब अगर आप छोटे लोन लेना चाहते हो, 50,000, 1 लाख, इस समय इन दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती
0: है। अच्छा, तो इसमें और एक, क्योंकि बैंकों में तो जनता की अपनी पैसा जमा हुआ रहता है, तो इसमें चुकौती का जो प्रावधान है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस प्रकार की रहती है?
1: रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए RBI डिसाइड करती है, तो लेकिन वो भी बहुत कम ही रहता है, जैसे 8 से 9% के बीच में ही रहता है MSME मुद्रा लोन्स में। तो बेसिकली जो RBI का जो एक वर्ड है RLLR, उसका जो बेस रेट है, उस पे जो जो लोन लेने वाला आ रहा है बंदा, वो पहले वाले उसका लोन चुकौती का हिस्ट्री वगैरह देखा जाए कि ये पहले इन्होंने लोन लिया किस तरह चुकाया, नहीं चुकाया, उसके आधार पे वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके दिया जाता है। मतलब बहुत कम रेट पे आपको लोन मिल जाएगा।
0: और तो ये चुकौती का पीरियड कितना तक होता है?
1: चुकौती

0: देखिए मुद्रा लोन में आपका सबसे ज्यादा से ज्यादा 84 महीनों के लिए होता है, 7 साल के लिए।
1: अच्छा।
0: लेकिन वो आपके सुविधा के अनुसार आप ले सकते हैं। अगर आपने 50,000 का लोन लिया तो 3 साल में आप चुका दीजिए। आपने 5 लाख का लिया है तो आपको थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए आप 5 साल या 7 साल ले सकते हैं।
1: अच्छा, इसमें मतलब छूट है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि
0: तो ये साल सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको 7 वर्ष का समय मिलेगा।
1: अच्छा, तो इसमें और एक जानकारी दीजिए कि बहुत सारे जो हमारे जो श्रोतागण है उनको लगता है कि मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, उनकी हमेशा दुविधा स्थिति में रहते हैं, तो इसमें कौन कौन से ले सकते हैं, ऐसे क्या प्रावधान है, कौन से ले पाएंगे इसमें?
0: बिल्कुल, ये ऐसी चीज है ना कि सबसे पहले तो जो नए व्यवसायी जो अपना बिजनेस करना स्टार्ट तो कर रहे हैं वो रोज रात में सोचते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है लेकिन इसके लिए मुझे पूंजी की जरूरत है, तो बैंक आने से हिचकते हैं कि मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप एक बार बैंक जाइए, जिस बैंक में आपका खाता है आप वहाँ जाइए, एक बार वहाँ के जो भी लोन अधिकारी से मिलिए, उनसे बात कीजिए कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ सर, मुझे क्या क्या दस्तावेज लगेगा या फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सजेस्ट कीजिए। वो आपको सही रास्ता ही दिखाएंगे और आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। तो पहले आप बैंक पहुँचिए, बैंक आपके लिए बैठा हुआ है, आप जो भी सहायता आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको आपके अनुसार आपको दिया जाएगा।
1: तो इसमें बहुत सारे जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर है कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए रखते हैं, कुछ कंपनी के रूप में भी बनाए रखते हैं, तो इसमें कौन लोग ले सकता है, साधारण से साधारण आदमी भी, क्योंकि फार्म है, कोई एनजीओ है, कोई ट्रस्ट है?
0: आज की डेट में अभी जो हमने बात की स्पेशली मुद्रा लोन के लिए, तो इसमें 10 लाख तक के लोन हर कोई मुद्रा में क्लासिफाई हो जाएगा। इसमें एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति एक होता है वो ले सकता है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म वाला जिनका करंट अकाउंट या जो दुकान चला रहे हैं, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो ले सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हुआ और एक छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो भी ले सकती है, लेकिन उनका वही कंपनी है तो फिर भी उसका 10 लाख रुपए के अंदर में शुरुआत के समय में उनको 10 लाख रुपए तक कहीं मिलेगा। योजना को मेन चलाने का मेन रीजन भी ये रहा कि इससे जो व्यक्ति है उसका भी रोजगार बढ़े, वो अपने साथ 2 या 4 लोगों को भी उनको भी रोजगार दे सके।
1: अच्छा, जानकारी और एक दे दीजिए अंतिम समय में कि वर्तमान समय में गांव-गांव से लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, खास करके युवा जो चेन्नई हो या मद्रास हो या गुजरात हो, ऐसे जा रहा है, तो क्या हमारा जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से उन बेरोजगारों को एक सशक्त जीवन शैली अपनाने में या उनको

0: कोई भी काम से शुरुआत करेंगे तो आगे सफलता को मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो बैंक के साथ जुड़े रहना है, उनको आपका जो जरूरत है उस हिसाब से बात करना है, और ये काम एक दूसरे के साथ मिलके ही किया जा सकता है, अकेले कुछ नहीं होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पे भी आपका खाता हो आप वहाँ बैंक में जरूर जाएं और इस बारे में पूछे आप, तो वो आपको जरूर मदद करेंगे आपके बैंक
1: वाले। सर, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और सरल शब्दों में जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का जो मकसद है सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना एक सार्थक साबित होगी। आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी ले रहे थे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की आवश्यकता क्यों। इस जानकारी के बाद आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये संदेश।
3: जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 800,000 सालों या 800,000 सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
2: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। विश्व प्रसिद्ध सरायकेला रथ महोत्सव की तैयारियों के तहत झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने श्री जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की। डीजीपी ने अधिकारियों, मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय अनुकंपा एवं स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, उग्रवादी हिंसा से जुड़े मामलों, एमएसीपीएस सेवा संपुष्टि तथा विभिन्न विभागों के प्रोन्नति प्रस्तावों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आज वार्षिक आषाढ़ी पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि योगिनी एकादशी पर होने वाली इस वार्षिक पूजा का विशेष

0: धार्मिक महत्व है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के जनबानी गांव में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक अवैध महुआ शराब भट्टी ध्वस्त कर दी। कार्रवाई के दौरान 800 किलोग्राम जावा महुआ और 30 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। और खूंटी थाना क्षेत्र के घाघरा गांव स्थित तजना नदी किनारे आज एक युवती और एक युवक का शव मिला है। मृतकों की पहचान लोहरदगा जिले की नेहा कुमारी और अरुण कुमार राणा के रूप में की गई है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की सहायता से मामले की जांच की जा रही है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हुआ खड़ा बस कुछ ही पलों में।

0: aimatan taiknabu hero ria dureng Subhash Chandra Honhaga ando akinye juriko paete elamiye bepata jagarbu ayumiya inga hayam bisere okona abu nen inga hayam chi ho bhasa atu anusire chilke dabi iri lagete chilke bu kurumutu ekne ando nendya jankari chilke mina nen bepata jagarkin japagartana Jagannath hesa ando Ram Singh chatar lote elamarbu ayum kinye
1: ayumten haga ente bonduko tesing elabo ayumile ya chi abu ho hayam mamarang re esupur e ayarpa tersan lagitin kami kuru lagatingi ena lagitin abu abu e taida te ki dili dorobar yaketin dokulate hoba ndo ena do chili ke ena lagin tesing setra kana kupul king ling kia kat kingi pepertana ling akingi e onur makingi jagar ya Aling pete maraban johar ge.
0: Johar.
1: Ente tesing abu e nen janagar lagi ti ingga haya mamarang janagar lagi n abena unur ma yate jagar leben.
0: Salam kaling pete johar andam se. Aling natum do Jagannath Hesa do adibasi hosma jiwa masabas Jharkhand Pradesh Committee Sanskritik Sachiv minaringi bartaman do.
1: Acha thigye. Hatuk do?
0: Hatuk do aling bila mundui kumadu perkan.
1: Acha thigye. Ento abu ho hayam ria mamarang lagin esupur eko lagatinge kene inate ko lagating ti ao dorkar ge mena endre do nena china lagi lagating ti dorkar ina juga abenta ate jagar pling ayum sanang na
0: na mane abu Jharkhand ete Odisha ete Paschim Bengal ete and ar ibani man tade ete mane na sab kurumutun tene sanin sanin jaga bu sina otana dilli dorbar bu sina otana dilli tutugar te bu sina otana mane endre a मुख्य कारण दबु ए पासा आटु अनुसुचिरे सामिलतिया ची दाबी रीतिया मैं नंरे ऐसो पुरे लाभो वो नाम दो ये चिकची अबु जो दिबु आटु अनुसुचिरे वो सामिल लिया इन्दो पढ़ावतन को अंडो साहित्यकार को आर फिल्म इंडस्ट्री रन को या व्यवसाय तन को एमन एमन क्षेत्र रन को बुगिन बुगिन पुरस्कार वो नाम दो ये आर नकोरी रियो ना दो यूपीएससी लिखन परिचय करे अबु अब वो भाषा जो दी कास हमें लेकिन एंड तो ओकोन भाषा सामी लेकिन इन अब पढ़ाते हो पाव मैंने इन ते एग्जाम्पल ले एंड ना डिसेल का नकर को तो बुगिन बुगिन नकर को तो नाम दही
1: मैं तो अब झारखंड रे कि हाथू स्कूल करियो हो भाषा पढ़ाती है अदो ना मान्यता नामा करना झारखंड रियो द्वितीय राज्य भाषा रूप ते मनाती मीना इन तो अब चिनारिया तुरपाद बुदुर करोतना ने त्रुग दन अखुरु दन नाम दई बोन
0: नेलर दबो राज्य रे तो सिर्फ द्वितीय राजभाषा बु नाम दई ए
1: या
0: दो तात समंग दो आटु मन सिद्ध का सामे दो
1: अच्छा
0: किन अबु जो झारखंड ओ उड़ीसा ते जो ये मुख्यमंत्री के द्वारा खुले ते ताई किन न तक खुलते रे मन इना तो अबु एक तो राजभाषा विभाग मिना एन विभाग रे प्रस्ताव होजुए अंडो लोकसभा रे एन रे जगर होबना बिल पास हुआ इन चना मिना मने अब राष्ट्रपति माय महिम तिकिन ये साइन कहते न सामिल तय हुआ भाषा
1: अच्छा मैं तो इन लगे चीना चीना चले कहते हो बाबा इनका न्याय युमड ची आटु यानु सची रे सामिल रीति अलगे अब दिल्लीयो को सेन लेना मैं तिया इन चिल के ओकुन पाते को सेन ना चिल के को सेन ये ना
0: ये अब ने 2022 रबु सेनियन तय किंगे अंडो निना ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी फायते जो पूरे भारत वर्ष रे अलग अलग राज्य रे मिना बुतन को
1: मि
0: कमेटी वई किने हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी मेंते दो नेको पाते अब को मिटरन गया को नेको अनयर रे अब झारखंड पाते बु सेनियन दिल्ली रे जंतर मंतर दन रिके ना दो पिछले बारो रिके लेन तई किना लेन बारो रिके ना दो नेन बारो सु बणिए समर्थन नमियन अब मा महिम तिकिन जगर कडकिन जी अलिंग पाते समर्थन मिना दो लतर पाते जो कुन पार्टी मिना या तो राजभाषा या लो जगरती अलिंग जगर अलिंग अंडो अपे जो एमपी को मिना अकुआ संसद को मिना अकुआ अपे पाते ना कुरुमुटी ते मने अपे पाते लगाते इंते होबा में तकिन जगर कटा
1: इंदर इन पाये तो चिना चिले के तो होबा वा
0: अब ने को बार बार चिट्टी भी कुले को ते होबा वा मने ककलाय ते भी होबा मिसे मिसे
1: अच्छा
0: मने ची ने को मिना अकड़ को गया जी देखन गया को मने कर ककलाय तन गया को भाषा रिया दर्जा को असी तन गया मनतिया
1: अच्छा तो अबू ए इनका तो चिमिल लिखा संगी मिना अबू हो
0: ᱟᱵᱚ ᱞᱚᱜᱚᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱤᱱ 40 ᱞᱟᱠᱷ ᱞᱚᱜᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ
0: ᱟᱵᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱟᱥᱟᱢ ᱪᱷᱚᱛᱛᱤᱥᱜᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱦᱟᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱥᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱤᱢᱱᱤᱝ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱯᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱭᱛᱮ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱱᱟᱵᱚ ᱱᱮᱯᱟᱨᱮᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱚ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱮᱯᱟᱨᱮᱱ ᱠᱚᱜᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱯᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱭ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮ ᱛᱮ
1: ᱤᱭᱟᱹ
0: ᱤᱱᱯᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱛᱮ ᱮᱱᱰᱚ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱚᱜᱚᱜ 9 ᱞᱟᱠᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱜᱮ ᱮᱱᱛᱟᱜ ᱨᱮ
1: ᱦᱚᱸ ᱠᱚ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱱᱟᱜ ᱡᱚᱝ ᱤᱢᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱛ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱟᱛᱟ ᱦᱟᱱᱟ
1: ᱤᱭᱟᱹ
0: ᱫᱚ ᱤᱱᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱤᱱᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱱᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱭ ᱡᱚᱱᱡᱟᱛᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱫᱚ ᱮᱱᱠᱚ ᱭᱚ ᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱱᱡᱟᱛᱤ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱭ ᱛᱮ
1: ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱤᱱᱠᱩ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱜᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮᱜᱼᱟ
0: ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱭᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱫᱟᱣᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱵᱟᱭᱱᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚ ᱟᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱟᱞᱟᱜᱽ ᱟᱞᱟᱜᱽ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱛᱚ ᱮᱱ ᱠᱚᱭᱮᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱠᱚ ᱦᱩᱵᱟᱭᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱪ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱫᱷᱟᱨᱱᱟ ᱨᱮᱭᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱦᱟᱱ ᱢᱤᱱ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱚᱦᱚᱸ ᱮᱥᱚᱯ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟ ᱪᱮᱞᱮ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟ ᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱯᱟᱨᱮ ᱢᱟᱜᱮ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱵᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱡᱚᱢ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱚᱥᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱭᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱦᱚᱵᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱵᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱱ ᱛᱟᱭᱠᱤᱱ ᱟᱞᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱚᱠᱚ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮᱜᱼᱟ ᱠᱟᱡᱤ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱮᱨᱮ ᱡᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱱᱠᱩ ᱟᱵᱚ ᱮᱱᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱷᱤᱢᱤᱱ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱯᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱞᱟᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱤᱢᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱱᱮᱱ ᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱨᱮ ᱮᱥᱚᱯ ᱨᱮ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱱᱩ ᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱞᱤᱜᱮ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱟᱠᱚ ᱯᱩᱨᱱᱯᱩᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱢᱟᱨᱛᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱠᱚ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱯᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ
0: ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ
1: ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱪᱤ ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱛᱮ ᱤᱱᱯᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱭᱛᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱤᱭᱟᱹ
0: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱠᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟᱭᱛᱮ
0: ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮ ᱱᱚᱛᱩᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱭᱤᱠ ᱨᱮ
1: ᱵᱟᱭᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱫᱤᱞᱞᱤ
0: ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱭᱛᱮ ᱨᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱫᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱤᱭᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮᱜ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱯᱟᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱪᱠᱟᱱ ᱨᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱯᱟᱨᱤᱭᱚ ᱡᱮᱥᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱱᱮᱯᱟᱭᱛᱮ
1: ᱤᱧᱫᱚ ᱞᱤᱯᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱡᱤ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱢᱤᱰᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮ ᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱛᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮᱜᱼᱟ ᱦᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱛᱤ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤ ᱫᱮᱵᱱᱟᱜᱨᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱛᱤ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱵᱟᱹᱲᱤᱧ ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱪᱤ ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱪᱟᱨᱚᱱ ᱵᱚ ᱩᱪᱪᱟᱨᱚᱱᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱲᱩᱝ ᱵᱚ ᱥᱩᱲᱩᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱞᱤᱯᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱚᱛᱜᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱠᱚᱵᱫᱨᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱱᱟᱢ ᱯᱟᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱲᱩᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚ ᱥᱩᱲᱩᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱦᱮᱢ ᱞᱮᱢ ᱚᱠᱚᱱ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚ ᱥᱩᱲᱩᱝ ᱫᱟᱹᱭᱤᱭᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚ ᱚᱞ ᱫᱟᱹᱭᱤᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱭᱟ ᱥᱟᱯᱟ ᱥᱟᱯᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮᱥᱮ ᱱᱟᱜ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱞᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱥᱟᱵᱫᱮ ᱵᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱥᱟᱵᱫᱮ ᱵᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱩᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟ ᱚᱞᱚᱜᱼᱟ
1: ᱠᱟ ᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱱᱟᱜ ᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱛᱤ ᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱮᱛᱚ ᱠᱟᱴ ᱠᱚ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟ ᱪᱮᱞᱮᱠᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱱᱟᱜ ᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱤᱢᱤᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱱᱚᱜ ᱡᱟᱜᱨᱩᱠ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱛᱮᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱥᱟᱭᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱦᱚᱸᱛᱮ ᱵᱳᱨᱰ ᱫᱚ ᱚᱞᱮᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱜᱨᱩᱠ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸᱛᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱛᱮ
1: ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭ ᱠᱚ ᱯᱟᱥ ᱛᱟᱫᱟ ᱦᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱸ ᱤᱫᱜᱤᱭᱟ ᱛᱮᱨᱮ

बच्चों को अंजू दीदी का ढेर सारा प्यार। चलिए बच्चों, आज हम कुछ नया सीखते हैं। बच्चों आज राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है। मत्स्य का अर्थ क्या होता है? मत्स्य यानी मछली। हमारे देश में बच्चों मछली की भी खेती होती है धान के साथ। आज का दिन देश के मछुआरों, मछली पालकों और वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मानित करने तथा 1957 में डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के एच अली कुनी द्वारा प्रेरित प्रजनन तकनीक की ऐतिहासिक सफलता की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के बारे में समझाने का तात्पर्य था बच्चों कि मछली पालन को लेकर भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 1990 के दौरान सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत में नीली क्रांति का जनक डॉक्टर अरुण कृष्ण और हीरालाल चौधरी को माना जाता है। यानी कि आपने क्या सीखा बच्चों? आज हमने सीखा नीली क्रांति के बारे में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से, है ना? तो ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है और आपके भविष्य में काम आएगा, कभी भी आपके परीक्षा में काम आएगा, इन सबको सीखना है। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस और मछली पालन को लेकर के नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 1990 के दौरान की गई थी। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, कुछ और नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: सही राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: जिंदा है कोई को नाम रसून पार ली वह चलते एकदम हमारे पूरा एकदम अखंड।

0: bubun rata sa sangka eh. Iwagay mita uran ka. Ali ayan itong tayo ng apulatan.
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को

शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट।
1: ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड।
0: तो
1: डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी।
2: पर पैसे तो गए।
1: नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई।
3: और सुनिए, समय से जो की शिकायत
4: मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत।
5: अब यह कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: चलिए इन संदेशों के बाद बच्चों आइए कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा

0: या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है। तो आइए जरूरतमंद बच्चों का हाथ बढ़ाए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 और 9090700489 पर संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी। चलिए बच्चों, इस जानकारी के बाद आइए मिलते हैं आपके प्यारे प्यारे दोस्तों से।
1: मैं शुभांकर गोप संवाददाता।
2: मैं जयंत गोप द्वारपाल।
3: मैं अश्रिता कुंकाल राजकुमारी पद्मा।
0: चलिए आप सबका स्वागत है आज के ड्रामा में अशोक का शस्त्र त्याग। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका पहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उसके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं।

0: आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हो चुके हैं, पर हम आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम?
1: राजन, संवाददाता आना चाहता है।
0: आने दो।
2: महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं।
0: मारे गए हैं? तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो?
2: बोलू क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज ही बंद है। फिर किस मुंह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया है।
0: कलिंग के फाटक आज भी बंद है?
2: हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है।
0: बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना की वापस चले जाएगी।

दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं।

0: मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसके दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे।
1: मगध की जय, सम्राट अशोक की जय।
2: सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना की कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं।

0: तुम वीर कन्या, वीर भागनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उससे तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रतिज्ञा करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी।
1: यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। तुम कौन हो देवी?
0: मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगना है, के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ।
1: अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा।
0: क्या महाराज?
1: शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी।
0: और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग सिंदूर पहुँच दो, फूंक दो उस शास्त्र को। तुम्हें यह सिखाता है, मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियाँ तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर आहुति होगी।
1: बहुत हो चुका है राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। कभी युद्ध नहीं करूँगा।
0: यह क्या महाराज?
1: तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो।

0: अपनी तलवारें।
1: मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है।
0: तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वो आपके आगे नत है।
2: सबको मिलेगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा।
0: मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
2: बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि।
0: बुद्धम शरणम गच्छामि।
2: धर्मम शरणम गच्छामि।
0: धर्म शरणम गच्छामि।
2: संघम शरणम गच्छामि।
0: संघम शरणम गच्छामि।
3: धन्यवाद।

इसी के साथ आज का हमारा नन्ही दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिन का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मो के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशक अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और कुशल मानव संसाधन के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने पर्यटन नीति 2026 और होम स्टे नीति के माध्यम से धार्मिक, इको, साहसिक और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना प्रस्तुत की। उन्होंने निवेशकों से झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख पर्यटन और रोजगार सृजन केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य निर्वाचन

0: निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के विरुद्ध निलंबन सहित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण संग्रहण और डिजिटाइजेशन में तेजी लाने तथा 14 जुलाई को सभी बूथों पर बीएलओ बीएलए 2 बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि समीक्षा के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान तेज करने, सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
1: डीजी मैडम की अध्यक्षता में आज सभी जिले का जो परफॉर्मेंस है क्राइम और नक्सल सिनेरियो पे, उस पे विशेष रूप से चर्चा की गई और जो नक्सल अभियान तथा आने वाले फेस्टिवल्स और क्राइम रिलेटेड जो सिनेरियो है उसको लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। और विगत कुछ महीनों में काफी सारे ऑपरेशन उन लोगों ने यहाँ पे किया है जिसके वजह से नक्सल का स्ट्रेंथ अभी काफी कम हो गया है और आने वाले समय में जो बचे हुए ग्रुप्स के ऊपर हम लोगों की तरफ से प्रभावी कार्रवाई की जाए।
0: बोकारो जिले में नष्ट की जाने वाली करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने डिपो मैनेजर और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
2: जितने संबंधित पदाधिकारी या कर्मी हैं उन सबको सोकाज पूछा गया है और सोकाज पूछने के उपरांत अगर उनका संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया तो उस पर अग्रतर कार्रवाई होगी। अभी देखते चल रहे आगे आगे और भी कार्रवाई होगी। आप आश्वस्त रहें, विभाग गंभीर है और गंभीरता के साथ दोषियों पर कार्रवाई करेगी।
0: धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में 15 वर्ष बाद अदालत ने पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक सहित 30 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2011 में बीसीसीएल आवासों से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी रांची की टीम ने बुढ़मू अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा, राजस्व उप निरीक्षक राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि को म्यूटेशन की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। परिवादी सुबोध कुमार ने एसीबी से रिश्वत लिए जाने की शिकायत की थी। जांच में यह मामला सही पाया गया। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताराटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि आरोपी कस्टमर सपोर्ट के नाम पर और एपीके फाइल भेजकर लोगों से ठगी करते थे।

0: साइबर क्रिमिनल सेफ्टी में और इसको लेकर के टीम बनाया गया था और उस टीम ने छापामारी किया और उसमें पांच लोग थे, लोग के पास से 10 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 8 लैपटॉप और 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। कई एपीके फाइल भेज करके इनके द्वारा लोगों से साइबर ठगी किया जा रहा था।
1: जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड में एक और आरोपी राहुल दुबे ने आज बिष्टुपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है।
2: पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, इनका जो एक मिलजुल के सहयोगपूर्ण कार्यक्रम स्पीडी ट्रायल करना और उनके माध्यम से उन लोगों पर इतना दबाव बन गया है कि वो अब ये प्रयास करते हैं कि वो या तो यहाँ से चले जाना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से संदेश है सभी लोगों को कि अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई है उनमें तो हम जरूर पकड़ेंगे लोगों को और सजा दिलवाएंगे।
1: गिरिडीह की विशेष एनडीपीएस अदालत ने वर्ष 2010 में दर्ज अवैध अफीम की खेती और तस्करी से जुड़े मामले में 27 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। यह मामला लुकैया नयनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था जिसमें 29 लोगों पर अवैध रूप से अफीम की खेती और कारोबार करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नहीं कर सका। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां चन्नमस्तिका मंदिर में आज वार्षिक आषाढ़ी पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर मां को 56 प्रकार के व्यंजन और ऋतु फल अर्पित कर राज्य तथा देश की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की गई। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि योगिनी एकादशी पर होने वाले इस वार्षिक पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है।
3: आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है, बहुत ही तिथि महत्वपूर्ण है और गर्मी का समय खत्म हो गया, बरसात ऋतु चालू हो चुका है ताकि आसपास क्षेत्र में अच्छे से फसल हो, खेती हो, भरपूर रहे, आनंद रहे। और ये तो जागृत देवी है कि माँ हर मनोकामना भक्त को पूरा करती है।
1: झारखंड की अंडर 18 बालक रग्बी टीम जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। यह प्रतियोगिता गच्ची बावली स्टेडियम में आयोजित हो रही है। टीम की कप्तानी अजीत नाग कर रहे हैं जबकि सलमान भेंगरा कोच और किशन उराव टीम मैनेजर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिनों का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मो के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले में SIR का काम तेजी से चल रहा है। गिरिडीह DC रामनिवास यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद बताया कि 60% फॉर्म वितरित कर दिया गया है और BLO घर घर जाकर लोगों को फॉर्म पहुंचा रहे हैं। DC ने गांडे क्षेत्र के कई बूथों पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निदान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ धरातल पर दिखने लगा है। गरीब लोग पक्का

0: मकान पाकर बेहद खुश हैं।
1: मेरा नाम रजिया खातून है, दाढ़ी ढूंढ घर इकट्ठा सर मिट्टी का घर तो परेशानी था, अब अपने बाल बच्चों के साथ में अभी हम बहुत खुश हैं। ये सरकार का धन्यवाद करते हैं, अब हमको पक्का का घर मिल गया है।
0: गिरिडीह जिले के पंचायतों के रख रखाव के लिए मिली राशि को मुखिया द्वारा खर्च नहीं किए जाने पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी तेज कुमार हस्सा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष का 3,14,00,000 रुपया खर्च नहीं हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में भी 1,55,00,000 रुपये का आवंटन प्राप्त हो गया है।
2: गिरिडीह जिला के 344 पंचायतों के 6 पंचायत सचिवों को खर्च करने के लिए सुदृढ़ राशि पिछले वित्तीय वर्ष में दी गई थी, लेकिन मुखियाओं के द्वारा अभी तक 3,14,00,000 रुपया अभी तक खर्च नहीं किए हैं, जबकि इस वित्तीय वर्ष में भी उनके लिए सुदृढ़ मद में राशि आ गई है। उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र देना था, हम लोगों ने मांग की थी, अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उनके द्वारा जमा नहीं की गई है। वर्तमान में जो राशि आई है इस वित्तीय वर्ष की, उस राशि को हम लोग तभी उन मुखियाओं को देंगे जो मुखिया पिछले वित्तीय वर्ष की सुदृढ़ीकरण मद में जो राशि आई थी उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे, और साथ ही जो मुखिया खर्च नहीं किए हैं उनके विरुद्ध कारण पीछा भी करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि किस कारण से किस परिस्थिति में उस राशि को उन्होंने खर्च नहीं की।
0: मनरेगा योजना से किसानों ने आम बागवानी लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। गिरिडीह जिले के पीरटाड़ के किसान कहते हैं कि उन्हें आम बेचकर अच्छा फायदा हुआ है।
3: शेखर महतो है, पीरटाड़ प्रखंड ग्राम बांध का ये हमारा गांव है। प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को पता चला कि नरेगा से सरकार मुफ्त में आपको 3-4 लाख रुपया पैसा भी 1 एकड़ में देती है, और मैंने आपका मैंने एक स्वामित्व भी हो जाता है बागवानी में, आप खुद उसका ओनर भी हो गए बागवानी का। तो इस जानकारी मिला और किसी माध्यम से हमको 2-2.5 एकड़ में मैंने को बागवानी करने का मौका मिला, और मैंने जो एकदम बंजर भूमि था, जो कृषि योग्य बिल्कुल नहीं था, उस सब भूमि में हम बागवानी शुरू किए, और बागवानी मेरा मैंने इतना शानदार रहा कि हम लोग तो लगभग 50,000 का अभी तक आम बेच चुके हैं, और कम से कम 2,00,000-2.5 लाख तक और आम बेचेंगे।
0: जिला कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किसानों से आग्रह किया है कि वर्षापात के अभाव में मोटे अनाज के साथ साथ दलहन एवं तेलहन की खेती करें। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
4: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले आज हम पेश कर रहे हैं फिल्म यकीन का ये नगमा, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के बोल हैं, संगीत है हेमेश रेशमिया का।

श्रोताओं इस गीत को सुनना चाहते हैं सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, बेबी देवी, नताशा, विनोद कुमार पवन, मीना पवन, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, अनिल आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव, बड़ा बाबू सुपाई साइज से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश बेसरा, अनु, बनमाली बेसरा, पूजा और सिद्ध कुमारी।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है सर। कुमार शानू की आवाज है, कातिल सजाए के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अर्षित तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशरफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बीटीए रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू, ये हैं आमला टोला चाईबासा से। गांव गीता सरायकेला से राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, अमित गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, बिक्की गोप, राजू गोप, विनोद गोप, गीता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, अनामिका कुमारी। गांव चांदपुर पुटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा मोनिका, शिवम मौसमी, संतोष आनंद। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सर का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद पर छोटा नेमडी चाईबासा से, बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक, कोमल, रोहन, विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान बरेली के रेलवे केबिन के पास से, चनहट बरेली से, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक और मीका बिरक, सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंड्री, सुरमानी मुंड्री, हरामनी मुंड्री, हिमांती मुंड्री, डोबरो मुंड्री, साजन मुंड्री, सिद्धेश्वर मुंड्री, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंड्री, जानुम सिंह मुंड्री, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफ एम शिवा मुंड्री, बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और अमृत कुमार। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म क्रिएटर 3D का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, टोनी कक्कड़ का संगीत है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है तुमसे तुमसा नहीं देखा। श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं औरंगाबाद से राजेश साबरे पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, दंतरेगी से भागवत वर्मा, खरसवा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, भाई एस तेहुरी, न्यू कॉलोनी निमडी से चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अनीस और मुन्ना। चले इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है स्ट्राइल। नितिन, निशा और सिमी की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सवाशेरे, कुचाई इचाहतु से गोलाराम लोवादा, रुद्री लोवादा, सूती लोवादा, सोमनाथ लोवादा, पूर्णिमा लोवादा, लालमुनि लोवादा, बिंजना लोवादा, बाबा कुटी रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति चौहान, मडगांव बलौदा बाजार से रामदुलार साहू, नीतिमा साहू, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा। इन सबकी फरमाइश पर चलिए आपको सुनवाते हैं स्टाइल फिल्म का ये गीत।

0: हिंसा से सही राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार से मतलब पूरा ये ना।

0: kate, Susan ka eh. Iwagay bitawuran ka. Ali, ayan itong tingin nila apulatan.
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

Sega! श्रोताओं, इन संदेशों के साथ ही आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। हम आपको अपना पता बता दें, हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। तो इस पते पर अपने खत हमें जरूर लिख भेजें। आप अपने सुझाव, अपने गीत और अपनी बातें हमें जरूर लिख भेजें। हमारा हम सबको आप सबका वे सब इंतजार है आपके खतों का। तो अब छवि को इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है तुम भी। अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। लक्षणपुर से जीवन लाल रजक, रामजी साहू, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान। भटगांव बलौदा बाजार से राम दुलार साहू, नीलिमा साहू। बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सवासेरे। कुचाई इचाहतु से गुलाराम लुवादा, लोजी लुवादा, सूती लुवाजा लुवादा, सोमनाथ लुवादा, पूर्णिमा लुवादा, लालमुनि लुवादा, बिंजना लुवादा। चले, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तुम बिन का ये गीत अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं यस बॉस फिल्म का ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है जतिन ललित का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं चांडिल ग्राम हारूडे से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो और दीन बंधु महतो। बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परीन और नबीहा। छोटा निमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी, ऋतिक कुमार। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत, मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, वीटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म यस बॉस का ये गीत। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, जावेद अख्तर के बोल और संगीत है जतिन ललित का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है तेरे नाम। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल और हिमेश रेशमिया का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा, ग्राम गिलिया लोहर से कोमल बेजरा, बासंती, रमेश, अनु बनमाली और सिद्ध कुमारी, गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद, तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी और अर्पिता कुमारी। चलें, सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद पर। माहुलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, संतोषी दीपक संतोष, राहुल अनु, तनु भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, किशोर महतो। रेलवे रोड गंजडुंड वारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुल्ढाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर, गोपाल पाटिल। कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा देवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, असमा सालिया, सुएब, पुजतापा खान, राव भाई, सायद भाई। गांधुबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म त्रिदेव का ये गीत। एलिशा चिनॉय की आवाज़ है, आनंद बख्शी की बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है डार्क द फायर। कुमार शानू और अनुराधा पाडवाल की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। नारायणपुर आमदा से नायटू महतो, खेत्रो मोहन साहू, कैलाश बाबा, सुषमा, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो। संजय बिरुआ, डेमचौंग पाड़िया, पिंकी पाड़िया, चंपाई बिरुआ, बलबीर बिरुआ, ग्राम खजूरिया से। राधुविका गोप, टेलू कैप्टन, श्रीमती राजमुनि, राजू बिरुआ, प्रेम प्रकाश बिरुआ, ये सब खजूरिया के हैं। चलिए इन सब के

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अब अगला किताब को सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है स्लम डॉग मिलेनियर। सुखविंदर सिंह और तन्वी शाह की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं जमशेदपुर हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, ग्राम लोसोदकी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद, जीतू, साईमान महतो परिवार के सभी सदस्य। कुचाई ग्राम इचाहत से गोलाराम लोवादा, लूदरी सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनि, विंजना और लोवादा परिवार। ग्राम पोंडाकटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली, साजीव सोरेन और एनएस महली। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज और करनाल से जगी दुआ। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी शर्मा। चटौता सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। राजनाथ गांव से याकूब।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है क्रिमिनल। कुमार शानू की आवाज़ है, एम एम किंद का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं अशोक कुमार ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, आदर्श नगर बठिंडा से, सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। ग्राम पंचोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक आराध्या चंसौलिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज

शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। चले इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रिमिनल का ये गीत।

0: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीकंठा अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको हम ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या बस कुछ ही पलों में।
1: Darling, every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without?
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश

0: जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम,
1: दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम

0: 96.32 पैसे पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला

0: आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से और रक्षा सहयोग के मुद्दे राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। Headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his Omani counterpart Badr, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity. Of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon, storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. An enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness a performance by the Nad Vocal Ensemble.

docs@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज महफिल में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाए कुछ गजलें। तो चलिए गजलों का सिलसिला हम शुरू करते हैं इस गजल से।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना पंकज उदास के स्वर में चंद गजलें। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग, बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। सुरों के रंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सुनाते हैं आपको फिल्म डांस डांस का ये गीत एलिशा चिनॉय की आवाज में। अनजान के बोल हैं, संगीत है बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है दाऊद। मेलडी की आवाज है ए आर रहमान का, संगीत है

श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे फिल्म दीवाना मस्ताना का ये गीत उदित नारायण की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म दामिनी का ये गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरु किरण। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चांदनी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और बाबला की आवाजों में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla.